आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका हृदय से स्वागत करते हुए हम चला रहे हैं ये प्यारा गीत इस तरह से है।

भूले अफसाने फिर से याद आए, रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ ये गीत हमने पेश की आपके लिए। उम्मीद है गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिन हुए ये गीत हमने चलाए थे, आज फिर याद हो गया, हमने सोचा फिर आपको सुना दूँ। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो ये है बजरिया के बीच। बस सुनिए लता जी की हाहाकार।

मैं गले लग जाऊं बजरिया के बीच, हमने कहा लता मंगेशकर जी नहीं लेकिन आशा जी, आशा जी की आवाज़ में सुनाया गया फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है, ये गीत दरअसल में यहाँ पर लिखा है कि इस एक्ट्रेस की आंखों को देखकर बहुत से बॉलीवुड वाले फिदा हो जाते थे, पता नहीं हाँ है या ना है, लेकिन सोचिए ये रायश्री है उस ज़माने की एक्ट्रेस 60s का। बाद में वो कहाँ चले गई, हाँ पता चला अमेरिका चली गई, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं पता चला इनके बारे में। रायश्री का ये फिल्म है और एक्टर इस वक्त मुझे मालूम नहीं है, शायद याद हो जाएगा बाद में मैं, लेकिन चलो वो गीत तो आपको सुनाते हैं जिनकी आंखों को देखकर बॉलीवुड वाले फिदा हो जाते थे।

तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, रफ़ी साहेब को लता जी आपको सुनाएं। ये गीत हमने निकाले हैं आप ही के लिए शुभकामना के साथ। लीजिए, आप ही के लिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

बन के पंछी गाए प्यार का तराना। लता जी और साथी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं आपके लिए, ये एक बहुत पुरानी गीत है। जी हाँ, बहुत पुरानी गीत है, लेकिन इसे जितने बार भी सुना जाए लगता है हाल ही में रिकॉर्ड हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा गीत है कि यही लगेगा कि ये गीत हाल ही में रिकॉर्ड हुआ है।

दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, रफी साहब और सुमन कल्याणपुर फिल्म मिस बॉम्बे में से निकालकर हंसराज बहल के साज पर हमने पेश की आप ही के लिए। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो अगर जहाँ आप चुन ही हैं तो चलिए हम आपको मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस का एक गीत सुनाते हैं।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए दो होंठ हिले किसी ने मुझे ऐप की कि गंगा, ये गीत तो आप अभी चलाए चुके हैं। हाँ, बात थोड़ी सी सही है, दरअसल में वो भी लता जी की थी। जी हाँ, वो लता जी नहीं, वो भी मुकेश का था और धुन एक ही है लेकिन शब्द अलग है। वो था ऐ प्यार मुझे रो लेने दो और ये था दो होंठ हिले। मुकेश जी की आवाज़ में दोनों गीत गाए गए हैं मुकेश द्वारा, लेकिन शब्द अलग है, धुन वही है। तो यही बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विभिन्न हेल खुलो इस तरह हमके नाम आखिर तो नाम लेवे के बाकी तुरंत कान बहुत तेज है और दिमाग बहुत तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है, चलो सुनते हैं लता जी और सिर्फ लता जी है।

जी हाँ, लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत। और यहाँ तक मेरा ख्याल है यह फिल्म नौशेरवान आदिल का ये गीत हमने पेश किया है। इस तरह से आ रहा है ये शानदार गीत है।

0: मेरी आवाज के पीछे चले आओ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत हमने पेश किए। जी हाँ, तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है, देखते हैं लता जी की आवाज़ में एक बार फिर।
1: शर्मा
0: नहीं रफ़ी,

फिल्म शहनाई निगतिम फिरे सस्तक का ये फिल्म है और हमने पेश की इस फिल्म में से ये गीत निकाल कर। तो हाँ, www.fawn.fm.nl पर आप चून हैं, जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप हैं तो मैं हूँ, और जब आप नहीं होंगे तो फाउन हिंदुस्तानी भी नहीं रहेगा रेडियो। तो आप ही से हम सब हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो ये है इस तरह से।

सनसना सनसना सनसनन लता जी और साथ ही मोहम्मद रफ़ी के साथ ये गीत हम पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये हैं उदित नारायण जी।

उतनी नारायण जी की आवाज में हम ये गीत आपको सुनाए, मेरे लिए तूने तुम्हें रब ने बनाया है, और शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से

अरे वाह क्या बात है, एस डी बर्मन के साज पर फिल्म बम्बई का बाबू में से निकाल कर लता जी की आवाज़ में हम पेश किए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं वो माइती मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस। सुनिए इस तरह से।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस ये गीत आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हमने निकाले फिल्म जिंदगी और तूफान में से निगती फैफ से 1975 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर इस गीत में बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द हैं तो मैंने ढूंढा तो पता चला लिखने वाला है राम अवतार त्यागी जी कोई लिखने वाला है लिरिसिस्ट है स्क्राइबर है राम अवतार त्यागी जी की शब्द है ये फिल्म जिंदगी और तूफान में से निकाले हमने

हाँ अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नई गिनती फिर से ही तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैथ मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी और रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकती एन सही फिल्म का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर दर्द से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: हाँ? किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा। तवारीख गवाह है, यानी खुशकी दिन इतिहास गवाह है। अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। आओ, ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन सस्त सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाएं। चलिए, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाएं, निकिति तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। दिन से ही फिर तक कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.pinfaunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वेत हमने पेश की हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर आज पर

तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और ये गीत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस आप इसे सुनिए और निर्णय कीजिए क्या कैसा गीत है। इस तरह से आ रहा है।

सुरेश वाधिकर जी और लता जी ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं, जबकि आप सुन रहे हैं ओ मैं चला रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दनहा शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है, हाँ सुनिए, रोना लैला जी, इस तरह से

सारी दुनिया के वीरां पाओगे जब हम नहीं होंगे, ये तो बात सच है, ऐसा होता है ज़िंदगी में। और हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम में रोना लैला जी की आवाज़ में। तो चलिए रोना लैला जी के बाद हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़, आपके लिए भी एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है, फिल्म फिल्म फिल्म निका में से निकाले हैं

वाह क्या बात है, फंसा भी है जमा जमा। सलमा आगा की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दिल ने ये क्या सुन लिया, आंखों आंखों में तूने ये क्या कहा। ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश किए। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये धमाकेदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

डाकू पे डका डाले तो बड़ा मजा हो, इस शमशाद बेगम की आवाज में आपको सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए शमशाद बेगम जी के बाद हम आपको सुनाते हैं रफी साहब की आवाज।

0: चले
1: करते हैं प्यार समझ में आया
2: तकरार समझ में आया
1: चली हो कहाँ देखो इधर हम भी करते हैं प्यार समझ में आया।

0: तो हम भी करते हैं प्यार समझ में आया।
1: फिल्म कॉलेज गर्ल ने की थी ए ने फैफ तखर रफी साहब की आवाज़ में, आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। जी हाँ, तो क्या ख्याल है रफ़ी साहब के बाद हम आपको ये सुनाते हैं। हाँ, निगती द्रीन तख्त ए ने फैफ तक से सीधे चलते हैं द्रीन तख्त। जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सुन लीजिए।

अगर तुम ना होते हमें जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी ने कहते द्रीन तख्त का ये फिल्म है, हमने पेश की ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म तो टाइटल सॉन्ग है ये है अगर तुम ना होते नेक द्रीन तख्त का। आप चुने फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पर अगर आप चुने फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पर हम आपको ये सुनाते हैं। जी हाँ सुनिए, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन फिर भी है।

क्या बात है, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी भी नहीं है। आपको सुनाया गया फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, हमने पेश की ये शानदार गीत। चलो यहाँ से हम पेश करते हैं, जी हाँ, चलिए आपका स्वागत करते हुए फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, कहाँ गया मेरा गीत, और वो ये है इस तरह से।

भूले से किसी शौक पे दिल फेंक न देना, भूले से किसी शौक पे दिल फेंक न देना, झड़ जाएंगे सब।

हाँ वाह क्या बात है, आपने शायद शब्द सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर ये शब्द आप नहीं सुने होंगे तो। मुकेश जी जो है वो प्यार करता है, लेकिन रफ़ी साहब प्यार के ख़िलाफ़ है। बस यही सवाल और जवाब इन लोगों में था। मुकेश जी प्यार कर रहा था और रफ़ी साहब उसका खिलाफ था। ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, ये जी हाँ ये भी एक जानी पहचानी गीत, लंबा चौड़ा गीत है, 6.5 मिनट का, तो सुनिए ये गीत कैसा है।

तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आया है, आप तो ऐसे ना थे फिल्म का नाम है और हमने पेश की ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत। जी हाँ, अगला गीत है मैथी मुकेश, मैथी मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दो होंठ हिले, ये गीत पेश किया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, जब मैं सूर्य उदय या सूर्य अस्त का जादू देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कोई भी बढ़ता हमेशा नहीं रहती है, कोई भी ना, और कोई भी रुकावट ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। मित्रों, इस हमेशा बदलती दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है मित्रों, इसीलिए समय के साथ चलें और जिंदगी के सफ़र का मजा लें। जिंदगी के सफ़र का मजा लो मित्रों। लीफ मैनसन अलसिक द माखीफान जोंस ओपखांग ऑफ जोंस ओंदरखांग जी बसेफिक दट हीन ओपकोम्स परमानेंट इस en geen tegenslag lang duurt. Alles verandert in dit steeds veranderende universum, beste mensen. Dus blijf positief, vaar mee met de stroom van de tijd en geniet van de reis van het leven. Mitron, our doston. सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे मजबूत हथियार धैर्य है, और सबसे अच्छी निश्चिता विश्वास है, और सबसे प्रभावी दवा हंसी के मित्रों हंसी है मित्रों। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। अर्ध मैं द ग्रोटस्ट रैकडोम इस wijsheid. Het sterkste wapen is geduld. De beste zekerheid is geloof. En het meest effectieve medicijn is lachen. Lachen, beste mensen. Dus blijf altijd lachen. Hamesa hasteren, hamesa hasteren.

भाई बहनों, विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखाई नहीं देती, लेकिन वे नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना देते हैं। उस विश्वास और यकीन को मित्रों जिंदा रखें, जिंदा रखें। मैं इन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स खलूफ एंड खबैत जैन बैद ओन जिखबार मर जमाकन ओन मोहलक दिंगन मोहलक हाउ दत खलूफ एंड दी ओवर टेकिंग लीफ इन बेस्ट मैंसन एंड खासो दो। साथियों, अगर तुम पेड़ नहीं बन सकते तो झाड़ी बनो, अगर तुम हाईवे नहीं बन सकते तो रास्ता बनो, अगर तुम सूरज नहीं बन सकते तो तारा बनो, तारा बनो, क्योंकि ये तुम्हारे साइज से नहीं है कि तुम जीते या हारते हो। मित्रों, कि तुम जीते या हारते हो, तुम जो भी हो, जो भी हो, उसमें बेस्ट बनो, अच्छा बनो मित्रों, अच्छा बनो। लिफमैन्स वेस एंड स्ट्राइक अल्स ये खेन बूम कुन जैन एंड अल्स ये खेन स्नेल वह कुन जैन वेस दान अन पत अल्स ये खेन जोन कुन जैन वेस दान अन स्टेर वन हेट इस नीट दूर ये ग्रोत दैट यू विन और फरलिस्ट वेस द बेस्ट इन व्हाट यू ऑगमेंट एंड डू लिफमैन्स।

भाई बहनों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं, ध्यान करिए मित्रों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं और उन्हें अपनी आत्मा में समा लेते हैं मित्रों, तो आत्मा स्वस्थ हो जाती है, खजौंत हो जाती है, मन शांत और मजबूत हो जाता है, जिससे चारों ओर अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं मित्रों, और शरीर को बहुत ताकत मिलती है, स्ट्रांग हो जाए है शरीर, ताकत मिलती है मित्र। लिफमेंसन फमे वनीर वो खोच खनाद एन जेखन एंगन ऐत नोलखन एन ज इन ओंज जील ओपनीमन वर्त ओंज जील खजोन वर्त ओंज खेस्ट कालम एन स्टेरक वत लेट तोत वेल विलंत हैत इन ओंज उमगेविंग एन फरक्रेट ओंज लिखाम इमेंस क्राख्ट वत मोई इस दित तो Wat is dit toch mooi, lieve mensen. Dus ga zo door, ga zo door. Dosto, hum sabhi mein apne aur dusron ke liye shanti, sukoon ke saath saath stress paida karne ki kshamta hoti hai, hum sabhi mein problem clear karne ke liye, mitron. Aur ye hamara nazariya hai, जो उनमें से एक को बनाता और पोषित करता है। मित्रों ध्यान करिए हम क्या बोल रहे हैं। और लिफ मैंसन वे आलमाल हैवन एट फरमोक ऑन ओम जो वेल रिस्ट स्टिल्ट अल स्ट्रेस द क्रिएरन फॉर ओन सेल्फ एंड फॉर अंदरन एंड हैट इस ओन जो हाउडिंग दी एन फन बेड ऑन द हाउड एंड फुट। ये हमारे में क्षमता है मित्रों, तो बुराई भी है हमारे में और अच्छाई भी है, तो इन दोनों में से हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी लेंगे, हम कौन वाला अच्छा रहेगा मित्रों।

दोस्तों, दयालु दिल बगीचे हैं, मतलब ब्लूम टर्न है। एक दयालु दिल बगीचे यानी ब्लूम टर्न है। दयालु विचार जड़े हैं, मतलब यादें हैं मित्रों। और दयालु शब्द फल है, दयालु कर्म फल है मित्रों। बेस्ट मेंशन फ्रिंदल का हार्तन जैंद तैनन, vriendelijke gedachten zijn de wortels en vriendelijke woorden zijn de bloemen. Vriendelijke daden zijn de vruchten. Pyare pyare bachon, samajhdari wo inaam hai jo aapko zindagi bhar sunne ko milta hai. Jabki aap baat karna pasand karte the. Mitron, beste en vriendelijke mensen, wijsheid is de beloning die je krijgt voor een leven lang luisteren, terwijl je liever zelf had gepraat, maar het wordt door anderen gesproken over jou. Goed of slecht, dat ligt in jouw handen. Jab zindagi aapko tootne aur rone ke sau karan de, to zindagi ko दिखा दो मित्रों कि आपके पास मुस्कुराने और हंसने के लाखों कारण है। मित्रों, मजबूत रहो, मजबूत रहो। बेस्ट मेंशन, अल्स हेट लीफन यू हंड्रेड रीडन गीफ्ट ओम इन टू स्टोर्टन एंड टू हाइलन, लात हेट लीफन दान जिन दैट यू अन मिलियन रीडन हैव ओम टू लाखन en te glimlachen, lieve mensen. Dus blijf lachen en blijf sterk. Blijf lachen, blijf sterk.

0: दोस्तों, हम खुश करने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना लेते हैं भाई बहनों, लेकिन अगर हम सबके साथ खुश रहने का फैसला करें तो ज़िंदगी सच में आसान, सुकून भरी और खुशनुमा हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है। मित्रों, आर्द्र मेंशन वो माकन हैत उन जेल्फ मुइल दोर इधर इन तो फ्रीड इन तो विल इन स्टेलन मर हैत लीफन वो पास एक्ट मकलक उन स्पनन एंड फ्रीड द फॉल आल्सो एयर फॉर किजन om met iedereen gelukkig te zijn. Wat mooi is toch dit? Wat mooi is het? Dosto, samay kabhi hamara intezaar karne ke liye tayar nahi rehta. To phir hum hamesha sahi samay ka intezaar kyun karte hain? Dhyan kariye mitro, hum samay ka intezaar kyun karte rehte hain ki sahi samay aayega? सही काम करने के लिए कोई समय गलत नहीं होता है और गलत काम करने के लिए कोई समय सही नहीं होता है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनने बाद में बहुत काम की चीज़ मैंने आपको बतलाया है। फ्रिंदन बेस्टमैनसन द तेत वक्त नोइट ऑपोन्स Waarom wachten wij dan altijd op het juiste moment? Er is nooit een verkeerd moment om de juiste dingen te doen. En er is nooit een goed moment om de verkeerde dingen te doen. Denk hier eens over na, beste mensen. Denk hier eens over na. Want wij zitten altijd met die gekke gedachten. Ating no boom, samay thik na hai, het is geen goede tijd.
1: Nee.
0: De tijd is altijd goed. Wij moeten weten wat we doen.

मित्रों, किसी को माफ करना आसान है, सहज है, लेकिन उन पर फिर से भरोसा कर पाना एक बिल्कुल अलग कहानी है मित्रों, अलग बात है, मुश्किल हो जाए। बेस्ट मैनसन ईमान फरखीफन इस मकलक मर ईमान वेर कुनन फरत्रोवन इसन हील अंदर फरहाल इसन हील अंदर तोरी। दोस्तों, ज्ञान पर व्यवहार हमेशा भारी पड़ता है। कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां ज्ञान काम नहीं करता है अनेवरों को, लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। आपके आचरण, आपके मनीरी, आपके संस्कार, वो वहाँ मायने रखता है मित्रों। बेस्ट मैंसन खदरख हिफ्त आल तेत अनफोर्स प्रों का हाथ ऑफ कैनस एरजेन फेल सिटिवासिस वार इन कैनस द कोर्ट्स हिट मार खदरख आलस ओपलोस खदरख। भाई बहनों, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और सफर का मजा लो, जीवन का सफर का मजा लो। बेस्ट मैंसन द्रूम ख्रूथ ब्लेव पॉजिटिव वर्क हार्ड एंड खनित फन द रेस फन ये लेफन खनित फन द रेस फन ये लेफन। बेस्ट मैंसन दैट इज अ मोयो ऑफ लॉसिंग। क्या सही है और क्या गलत है।

दोस्तों, पक्का इरादा रखने का मतलब है कि आपके मन में कोई ऐसा विचार ना हो जिसमें कमजोरी हो या ताकत की कमी हो। मित्रों, सिर्फ सही विचार और जीत के विचार जो आप खुद से कहते हैं पक्का है। जो आप खुद से कहते हैं और दृढ़ विचार हो मित्रों, लिफा मैंसन फर्स्ट बरादन जैन बतेकन खीन एंकल खदख्त है बन दी ज्वक्त ऑफ करख्त लोज है मैं जख्मे ब्रेंट अलेन अलेन पॉजिटिव खदख्तन एंड खदख्तन फन ओवरविनिंग दी ये जेल फोर हाउथ जैन जीकर। दिस blijf altijd positief, beste mensen, blijf altijd positief. Bhai bhaino, vishwas aur prarthana dono dikhai nahi dete, lekin ve na mumkin cheezon ko mumkin bana dete hain. Geloof en gebed zijn beide onzichtbaar, maar ze maken onmogelijke dingen mogelijk. Houd dat geloof en die overtuiging levend, beste mensen. Houd het levend. Mitron, kabhi samjhao mat. Sunie, kabhi samjhao mat. Tumhare doston ko iski jarurat nahi hai. Aur tumhare dushman is par yakin nahi karenge. Tumhare dushman nahi karenge aapke baat pe. आपके समझाने पर मित्रों, तो बेस्ट मेंशन, गीव नोइट uitleg, ये vrienden hebben het niet nodig. Geef nooit ongevraagd uitleg, want ze hebben dat niet nodig. En je vijanden zullen het toch niet geloven. Ze zullen het toch niet geloven, beste mensen.

दोस्तों, एक बच्चा एक बड़े को तीन बातें सिखा सकता है। तीन बात: बिना किसी वजह के खुश रहना, हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहना, लगे रहना मित्रों, और जो वो चाहता है उसे पूरी ताकत से मांगना, पूरी ताकत से। बेस्ट मैनसन अन किंत कानन फॉलोवासन द्री दिंग एन लेरन खुलकह जैन जोंदर रेदन altijd bezig zijn met iets en met al zijn kracht eisen wat hij verlangt, beste mensen. Aur mitro, aapke paas jo hai, uske liye shukr guzar rahe hain mitro, aur aapke paas aur bhi hoga. Apne kaamon par bharosa rakhein, wo maine nahi rakhte hain mitro, mehnat karo. एक लक्ष्य बनाओ और उसी पे चल पड़ो। लिफमैनसन वेज दंग बार फॉर वॉच ए हैप एन यूल्ट मेर करेगन हैप फॉर थ्रॉवन इन ये दादन जैलन वेल देख लक मे बेस्ट मैनसन।

दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को होते हुए देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि क्या हुआ, का होइगे। मित्रों, और सफल होने के लिए आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो चीज़ों को करता है, मेहनत करता है, सही रूप से करता होगा। मित्रों, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और हाथ बटोर कर झलुआ में सूतल करियो मित्रों, तो कुछ ना बनी और बीमार भी हो जाइयो। हाँ, बेस्ट मैंसन एरजेन मैंसन दी डिंगन फोर एलकार क्रैकन एन एरजेन मैंसन दी टू कैकन हु डिंगन खबेरन एन एरजेन मैंसन दी जिख अफराखन वट एर इज खबेर। लिवे मैंसन, ओम सक्सेसफुल टू जेन मुझे ईमान जेन दी डिंगन फोर एलकार क्रैक मुइट दू vooruitstrevend is, heeft een doel. Dus blijf je best doen en het lukt wel. Het zal zeker lukken. Maar nu ook blij lesie man en je wil iets groots worden, rijk worden, veel bereiken. Dat je lesie lek man, zeker een pad toe. Pas op, hè. En als je dat niet hebt, metro, ik zonder dress हमारे लोक को बेहतर बनाती है, लेकिन सुंदर व्यवहार में हमारी जिंदगी बदलने की क्षमता होती है। कपड़ा से लोग कहेंगे वाह मुई मुई मुई मुई है, मगर तुम्हारा व्यवहार कैसे है, दैट इज बलांगर एक ओ मेंस अनमोय योर फॉरबेटर ओंस अतरलक क्लियर maak de man luid een spreekwoord. Dus een mooie jurk verbetert ons uiterlijk. Maar mooi gedrag kan ons leven veranderen. Vind je dit niet mooi? Is dit niet mooi dat jouw leven verandert? Helemaal mooi.

भाई बहनों, जिंदगी एक सफर है जिसमें समस्याएं हल करनी है, प्रॉब्लेमन को हल करनी है, ऑप्लोस करनी है मित्रों, और सबक सीखना है इस जीवन की यात्रा में। लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभव बतलाना है, एरफारिंग जो आपको मिला है वो बतलाओ, शेयर करने और एंजॉय करने हैं मित्रों, मजा लेना है। दूसरों को भी बताओ सही सही बात। फ्रेंडन, हैथ लीफ इज अ रेस मेट प्रोब्लेमन ओम ऑप्टोलोसन एंड लेसन ओम तुलेरन मार बोफनल एरफारिंग एन ओम तेलन एंड फन तनीतन। Je positieve ervaringen moet je met mensen delen, beste mensen. Aur sathiyon, hamare gharon mein sahi temperature

0: मित्रों,
1: सुंदर विचार और अच्छे लोगों की संगीत एक संत आत्मा को पोषण है। मित्रों, मोये खदाख्तन एन हेट गजेलस्खाप फन फेन मैंसन फूदन अन फ्रेड गजील। भाई बहनों, जिंदगी इस बात से नहीं मापी जाती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितना प्यार देते हैं, कितनी दया दिखाते हैं और कितनी यादें बनाते हैं। मित्रों, ये है मायने। बेस्ट मैंसन हैत लीफन वोर नित खमेतन दोर वत वो बजेतन मार दोर द लीफ दी व खेफन द फ्रेंडलिकहेड दी व टोनन एंड द हेरिनरिंगन दी व माकन। दैट इज बलांगरेक। बेस्ट मैंसन मित्रों, टूटा हुआ भरोसा, ध्यान करना, टूटा हुआ भरोसा पिघली हुई चॉकलेट की तरह है, शोकोलाद की तरह है। तो चाहे आप इनसे कितना भी जमाने की कोशिश कर लें, फ्रीजर में घुसेर दे ठंडा होने के लिए, जमने के लिए, तो ये कभी भी अपने असली आकार में वापस नहीं आएंगी। तो इसीलिए आप अपने रिश्ता को, अपने जो बंध हैं किसी से, अच्छे अच्छे रिश्ता, उसे बिगाड़ो मत, फिर बनेगा नहीं, ठीक नहीं होगा। मित्रों, बेस्ट मैंसन खब्रोकन फर्त्रोवन एस अल्स खस्मोल्तन सोकोलाद हुए हैत ओक प्रबेर तब्रिजन हैजा नोइत मेर जैन और स्प्रंकलक फॉर्म आनेमन। It can't be, but start with best the man's.

मित्रों, खूबसूरत रत्न, खूबसूरत रत्न विनम्रता है। खूबसूरत रत्न विनम्रता है। सबसे बड़ा धन ज्ञान है और सबसे शक्तिशाली हथियार धैर्य है। धैर्य मतलब खुदुल्द है। और सबसे अच्छी निश्चयता विश्वास है। और सबसे अच्छी दवा यानी मेडिसिन, सबसे अच्छी दवा हंसी है। खूब हंसा करो दोस्तों, खूब हंसो, खूब हंसो। दूसरों को चिढ़ाने के लिए नहीं, मगर अच्छी बात पर, हंसी वाले बात पर खूब हंसो, खूब हंसो। शरीर के लिए ठीक है। मेंस हैट मोइस्ट सिरात इस नीदर है, द ख्रूस्त रेगोम इस वैस है, हैट क्रख्तस्त वापन इस खदुल्द, एंड द बेस्त जेकर है इस खलोफ, हैट बेस्त मेडिसाइन इस लाखन, फ्लिंक लाखन, हार्ट लाखन, मनीत ओमन आंद्र पेंट दून ऑफ्त त्रैतरन दत नीत मखवून खोजोंत लाखन। बेस्त मैं ऐ प्राणी, कल की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए आज अपने जीवन में लोगों के लिए प्यार और प्रशंसा रखें। जीवन का सार, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, यही है कर्म जो जिसके द्वारा आप सुखी हो सकते हो। लिफ़ मैंसन मोरखन इस नोइत खखारान देर दिस हैप फंदाख लिफ द एंड वर देरिंग फॉर द मैंसन इन ये लेफन द बतेकन इस फनत लेफन वेस खुद फॉर इदरें ऑन खाख्त खलोफ कुल्तूर रंग एंजफोर्स एंजफोर्स वेस फ्रिंदलक met iedereen, wees behulpzaam. Dat is wat de natuur van jou verwacht, beste mensen.

काया सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। हनुमान है नाम महान, हनुमान है नाम महान, हनुमान करे बेड़ा पार, हनुमान करे बेड़ा पार, जो जपता है नाम हनुमान, जो जपता है नाम हनुमान, होते सब दिन एक समान।

रखे राम जैसे रखे राम बस वैसे ही हमें रहना ही पड़ेगा। कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बरसते रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, शुभ दिन हम सभी के लिए। जग में सुंदर है एक ही नाम, जग में सुंदर है एक ही नाम, बोलो जी बोलो जोर से जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय हनुमान।

संकटमोचन हमने यहाँ पर श्रवण की है, आपके लिए पेश किया जाता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, कहते हैं कि स्वर्ग में देवता भी अभिनंदन करता है, स्वर्ग में देवता भी उनका अभिनंदन करता है जो हर पर हनुमान जी का वंदन करता है। और कहते हैं भी कि सुबह सुबह ले हनुमान जी का नाम, सुबह सुबह ले हनुमान जी का नाम, बाबा बाबा सिद्ध करे सब काम।

0: इतने शक्तिशाली हो।
1: हनुमान जी का नाम लेते ही भूत प्रेत क्यों भाग जाते हैं? इतिहास में ऐसा क्या हुआ था कि उनके नाम से ही सारे राक्षस और तंत्र मंत्र कांपने लगते हैं? दरअसल रावण का एक छोटा भाई था अभिरावण। वो काला जादू और तंत्र विद्या में बेहद निपुण था। रामायण के युद्ध के दौरान जब श्री राम और रावण का संग्राम चल रहा था, तब अहिरावण ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों को उठा लिया और उन्हें लेकर पाताल लोक चला गया। जब हनुमान जी को इसका पता चला तो वे भी पाताल लोक पहुंच गए। वहां हनुमान जी और अहिरावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अहिरावण किसी भी तरह से मारा नहीं जा रहा था। तब हनुमान जी को ध्यात हुआ कि अहिरावण की मृत्यु तभी होगी जब पांचों दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ एक ही समय पर बुझाया जाएगा। तभी हनुमान जी ने धारण किया अपना रौद्र रूप, पंचमुखी हनुमान। इस रूप में उन्होंने पांचों दिशाओं में जलते दीपकों को एक ही क्षण में बुझा दिया और उसी पल अहिरावण का अंत हो गया। उस भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक कांप उठे थे। तो आओ सब मिलकर बोले हनुमान जी का नाम, हनुमान जी का नाम।
2: छोटा रूप में हमने सुन ली है कि कहा के पंचमुखी हनुमान क्यों ऐसा उत्पन्न हुए हैं, किस कारण? क्योंकि उनको चाहिए था ये पांच दिशा में जो दीपक बुझाना था, इसलिए वो पंचमुखी धरे और एक ही साथ में वो पांच दीपक जो है वो बुझा दिए है, तो इसमें जीत हुई। इसलिए कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।

0: राम मेरी राम।
1: अगर उस रात हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप नहीं लिया होता तो राम और लक्ष्मण शायद कभी जीवित नहीं लौट पाते। लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण में था, रावण की हार तय थी, तभी उसने खेला अपना सबसे खतरनाक दाव। पाताल लोक के महातांत्रिक सम्राट अहिरावण को बुलाया गया। एक अंधेरी रात जब पूरा शिविर सो रहा था, तभी माया और तंत्र की शक्ति से अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें सीधे पाताल लोक ले गया, जहां सूर्योदय से पहले मां भवानी को उनकी बलि चढ़ाई जानी थी। जैसे ही विभीषण को इसका पता चला, उसने हनुमान जी को सूचना दी और हनुमान जी बिना एक कल गवाए पाताल लोक की ओर दौड़ पड़े। लेकिन वहां जो उन्होंने देखा वो किसी भी योद्धा के लिए अविश्वसनीय था। राम और लक्ष्मण बेड़ियों में जकड़े हुए थे और उनके चारों ओर पांच दिशाओं में जल रहे थे पांच दीपक। अहिरावण हंसते हुए बोला,
2: इन पांचों दीपकों को एक साथ बुझाए बिना मुझे कोई नहीं मार सकता।
1: एक शरीर एक दिशा, लेकिन यह चाहिए था पांच दिशाओं का प्रहार। तभी हनुमान जी ने धारण किया अपना सबसे अद्भुत रूप, पंचमुखी हनुमान। पूर्व में वानर, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह और ऊपर हयग्रीव। पांच मुख, एक साथ प्रचंड श्वास और एक ही पल में पांचों दीपक बुझ गए। अहिरावण की सारी शक्ति उसी क्षण समाप्त हो गई और अगले ही पल उसका अंत हो गया। कहा जाता है पंचमुखी हनुमान के पांच मुख केवल रूप नहीं बल्कि पांच दिव्य शक्तियां हैं, विजय, निर्भयता, सुरक्षा, समृद्धि और ज्ञान। इसीलिए पंचमुखी हनुमान को चारों दिशाओं का दिव्य रक्षक माना जाता है। जब भक्ति और शक्ति साथ खड़ी होती हैं, तो पाताल की अंधेरी ताकतें भी टिक नहीं पाती हैं। अगर आपको भी लगता है कि भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति होती है,
3: ऐसे ही है, भक्ति में बहुत बड़ा शक्ति है। मानते हो और विश्वास करते हो तो आप पे ये भी लागू है। हम सब पर ये जो मानते हैं और जानते हैं और मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो उन पर ये लागू है।

0: कि जो मिलना है प्रभु राम से, जो मिलना है प्रभु राम से, तो मिल पहले श्री हनुमान से।
1: जब राम जी और लक्ष्मण जी पाताल लोक में कैद हो गए तो हनुमान जी ने अचानक 5 मुख क्यों धारण किए और वो 5 मुख आज भी संकट मोचन क्यों कहलाते हैं? आइए इस रहस्य को समझते हैं। रामायण युद्ध के दौरान जब रावण हार की कगार पर था, उसने अपने मायावी भाई अहिरावण, पाताल लोक का राजा, को बुलाया। अहिरावण ने छल से विभीषण का रूप धारण किया, हनुमान जी को भटकाया और राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। अहिरावण की जान 5 अलग अलग दीपकों में छिपी थी, 5 दिशाओं में रखे गए, एक साथ बुझाना असंभव। जो 5 को एक साथ बुझाएगा वही उसका वध कर सकेगा। हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, समझ गए कि 1 मुख से ये काम नहीं होगा। तब उन्होंने दिव्य रूप धारण किया, 5 मुखी हनुमान। 5 मुख एक साथ प्रकट हुए। पूर्व दिशा में हनुमान जी का वानर मुख बल, बुद्धि और विजय का प्रतीक, दुश्मनों पर जीत दिलाता है। दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख भगवान विष्णु का उग्र रूप, राक्षसों और बुरी शक्तियों का नाश करता है। पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख विष, सर्प और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। उत्तर दिशा में वराह मुख पृथ्वी का संतुलन, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक। ऊपर आकाश दिशा में हयग्रीव मुख ज्ञान, विद्या और बुद्धि का स्रोत, अज्ञानता का नाश करता है। हनुमान जी ने एक ही फूंक में 5 दीपक बुझा दिए। अहिरावण का वध हुआ, राम लक्ष्मण मुक्त हुए। श्री राम ने गले लगाकर कहा, बजरंग बली, तुम्हारा ये रूप कलयुग में भी भक्तों की रक्षा करेगा। हर संकट में 5 मुखों वाली शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। रहस्य ये है कि 5 मुखी हनुमान कोई सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि पूर्ण सुरक्षा का कवच है। 5 दिशाओं से 5 प्रकार की बाधाओं से बचाते हैं। घर में 5 मुखी हनुमान की मूर्ति रखने से तंत्र मंत्र, बुरी नजर, भय, अज्ञान सब दूर होते हैं। तभी से भक्त पुकारते हैं, जय 5 मुखी हनुमान, क्योंकि बजरंग बली सुनते हैं हर दिशा से, हर संकट में। कमेंट में जय 5।
0: आपको हमने 2-3 बार ये बजरंग बली के 5 मुखी के कथा सुनाए हैं। मैं खुद भी सुनती हूँ ताकि हमको पता चले कि 5 मुखी जो है, 5 मुखी हनुमान, इनका कथा, इनका रहस्य क्या है, ये हमको पता चले। तो आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ऐसे कथा मिलता है सुनने के लिए। द एनक एख्त फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कहते कि हाथ से किया गया दान, हाथ से किया गया दान, मुख से लिया गया प्रभु श्री राम का नाम, कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता।

0: लखबीर सिंह लक्का जी के आवाज़ में कि मेरे घर के सामने हनुमान जी का पहरा है, क्या बात है। तेरी भक्ति से आता है, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम। ये बात तो सही है कि तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम। इस जग में सबसे बड़ा मंत्र, इस जग में सबसे बड़ा मंत्र, जय हनुमान जय श्री राम।
1: कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई पर चलते हैं, वे इस दुनिया की नजरों में अक्सर हारे हुए लगते हैं, क्योंकि कलयुग में दिखावा जीतता है और सच्चाई छुप जाती है। पर याद रखो, ये हार असली हार नहीं है। अच्छे लोगों की कीमत दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन ईश्वर हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर देता है। कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई पर चलते हैं, वे इस दुनिया की नजरों में अक्सर हारे हुए लगते हैं, क्योंकि कलयुग में दिखावा जीतता है और सच्चाई छुप जाती है। पर याद रखो, ये हार असली हार नहीं है। अच्छे लोगों की कीमत दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन ईश्वर हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर देता है।

संभाले तो हमें कौन संभालेगा। सुंदर अति सुंदर हनुमान जी स्पेशल आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। पवन पुत्र जिनका नाम है, पवन पुत्र जिनका नाम है, तिरुपति जिनका धाम है, स्वामी जिनकी राम है, स्वामी जिनके राम

0: Jai Jai Jai Bajranga Bali, Bali Mahima Teri, Devotional Rock, Rock Style पे ये हनुमान जी का भजन हमने श्रवण की है। जय जय जय जय जय बजरंग बली।
1: क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाते थे? चलिए जानते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान राम के दरबार में हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा तो हनुमान जी ने जिज्ञासा से पूछा, माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब माता सीता मुस्कुराई और बोली, मैं ये सिंदूर भगवान राम की लंबी उम्र और उनकी खुशी के लिए लगाती हूँ। बस फिर क्या था, हनुमान जी के मन में एक विचार आया कि अगर थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु राम की उम्र बढ़ती है तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो प्रभु राम को और भी लंबी आयु और सुख मिलेगा। बस तभी हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। जब भगवान राम ने हनुमान जी को इस रूप में देखा तो वे भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसे मेरी भी कृपा प्राप्त होगी।

अति सुंदर हनुमान जी का स्पेशल आपके लिए प्रस्तुत किया गया है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। हम आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ और ये दिन जो है

इतिहास कहते हैं, इतिहास कहता है कल सुख था, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, इतिहास कहता है, इतिहास यानी कि कल जो बीत गया, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है, अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज, ऐ मेरे दोस्त, तो हर रोज सुख हो।

मूल केस गोलाई के आवाज़ में यहाँ से हमने सुने हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, कुछ अलहदा आपके लिए यहाँ से पेश किया जाता है आज के तारीख में। ओ सुदामा जी ने कृष्ण श्री कृष्ण जी से कहा, सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि दोस्ती का असली मतलब क्या है, दोस्ती का असली मतलब क्या है। तो कृष्ण जी ने हंसकर कहा, हाँ कृष्ण जी के हंसकर कहा, कितनी मुस्कान है भी कृष्ण जी के ना। तो कृष्ण जी ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है ना ए दोस्त, वहाँ दोस्ती कहाँ होती है।

सुहानी चांदनी रात। राम नारायण शिवराम जी के आवास में आपके लिए पेश किया जाता है मेरे दोस्त फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। आपको हम बता दे और क्या बताना चाहती हूँ तो वो ये है, जरूरत से ज्यादा मिले तो उसको कहते हैं नसीब। जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है, सब कुछ है फिर भी रोता है, उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है, जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है जो, उसको कहते हैं खुश नसीब। यानी कि नसीब बदनसीब और खुश नसीब। तो आप इसमें से कौन वाला हो कि बदनसीब हो, खुश नसीब हो या नसीब वाला हो।

यादगार ऑर्केस्ट्रा के साज और संगीत में राम नारायण शिवराम जी के आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण की है। श्री कृष्ण जी के वाणी, श्री कृष्ण जी की वाणी वो ये है कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है।

बहुत खूब मुकेश चोलाई जी की आवाज में हमने श्रवण की है माई तेरी चुनरिया। हम जब सफल होते हैं, तो तालियां गूंजती है। हम जब सफल होते हैं तो तालियां गूंजती है, चमकते हैं चेहरे और कैमरे मुस्कुराहटें कैद करते हैं। मगर उसी भीड़ के पीछे एक इंसान खड़ा होता है ना फोटो में आता है, ना मंच पर बुलाया जाता है। बस

आंखों में नमी और होंठों में एक ही शब्द, बस आंखों में नमी और होंठों पर एक ही शब्द, मेरा बेटा, मेरा बेटा। उसने नहीं मांगी पहचान, उसने नहीं मांगी पहचान, ना ही चाहा सम्मान। उसकी सबसे बड़ी जीत, उसकी सबसे बड़ी जीत हमारा एक छोटा सा मुकाम। वो दिन में पसीना बहाता है, वो दिन में पसीना बहाता है और रात में ख्वाब बुनता है। हमें ऊंचाई पर देखने की, हमें ऊंचाई पर देखने की हर रोज एक नई कोशिश करता है। जब हमें थकान होती थी, जब

0: होती थी तो वो हमें था। वो पीता है ना कुछ कहता है ना जताता है, मगर उसकी चुप्पी में पूरे ब्रह्मांड जितना प्यार समाया होता है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

रेनी राम नारायणी और मुकेश चोलाई के आवाज में चंदन सा बदन फिल्म सरस्वती चंद्रा में ये गीत गाया गया है मुकेश जी के आवाज में। कहते हैं कि जिसका जैसा चरित्र होता है, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों से, शुद्धता होती है विचारों से, आदमी तब पवित्र होता है।

जीना यहाँ मरना यहाँ फिल्म मेरा नाम जोकर से निकाल दिया गया है राम नारायण शिवराम के आवाज में। प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणामय होना, वही प्रेम का वास्तविक अर्थ होता है।

हाँ अवश्य, ये सवाल तो उठता है कि कैसा तेरा संसार, छोटा बड़ा अपना पराया, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबका हो।

वाकई में जिंदगी ख्वाब है। हमको सुना दी एक बार फिर राम नारायण शिव राम यादगार ऑर्केस्ट्रा के साथ। जैसा जैसी मोहब्बत तुम अपने माँ बाप से करोगे, वैसा ही मोहब्बत तुम्हारे औलाद तुमसे करेगी। यही लेन है, यही देन है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, बस समझ समझ का फर्क है।

रियाज अहमद अली के निर्देश में। मेरे प्यारे सुनने वालों, बुद्धि भक्ति बुद्धि से होती है, भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है तो कर्म सुधरते हैं।

ये बात तो सही है कि राम के बिगाड़ल अब कोई ना बनाए, कोई के तो हिम्मत ही नहीं है कि वो बना सके कि राम के बिराग बिगाड़ल। सोचो तो कि राम, राम के नाम कितनी महिमा, कितनी अनमोल है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मेरी आवाज के सुनने वालों, प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, आप सभी को एक बार फिर बहुत सारे स्वागत कर रही हूँ। मैं रमता जोगी राम सुनाएगा आपको रामदेव चैतू।

मैं रमता जोगी राम, मुझे दुनिया से है क्या काम। जरा सोचो, जो राम में मगन हो जाएगा उसको सच में दुनिया से क्या काम लगेगा। सुना दी, जी हाँ, वही उस्तादों की उस्ताद रामदेव चैतन्य जी की आवाज में। आपके आने से जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आपके आ जाने से, आपके आने से जिंदगी कितनी खूबसूरत है। दिल से दिल में बसे आपकी सूरत है, दूर मत जाना हमसे कभी, दूर मत जाना हमसे कभी भी, भूल कर कभी हमसे दूर मत जाना। हमें आपके हर कदम पर आपकी जरूरत है। हरी अवतार जी की आवाज।

हम क्या कहे कि हम के हाँ, ये तो कह दिया कि हम तो पिएंगे दिन रात, मैं नहीं। पर श्रीमान हरि अवतार जी ने कहा, इनका असली नाम है सोमाई अवतार, और इस उस्ताद का जन्मदिन जन्म हुआ है नेखन दिन त्वेन तक के। इनका जन्म घाट है 8 मार्च 1923 तक में। हालांकि ये उस्ताद अब तो नहीं है, और इतने अच्छे अच्छे गीत बैठक गाना गीत हमारे खातिर छोड़ गए हैं। अकादेमिस सिकनर्स के ये एम्बुलेंस ड्राइवर था, शोफेर। द हेर हरि अवतार इस खबोरन ऑफ 18 मार्च 1922 एंड फ्रॉम बरूप वास है एम्बुलेंस शोफेर बाय द अकादेमिस सिकनर्स इन पारामारिबो। En op jeugdige leeftijd begon hij was zijn interesse in zang en muziek. Aur khas baat ye tha ki ye apna sangeet apne hi style mein ye ontwikkel karte the. आप गाने जो सुनते हैं आपको इससे भी महसूस हो जाता है कि ये अपना ही अंतविकले आप अपना ही बनाए हुए

0: करण जी के आवास में यहाँ से मिलकर हमने श्रवण की है। ये भी ओल्ड इज गोल्ड आपके लिए पेश किया जाता है। कितना कितनी मोहब्बत है तुमसे, कितनी मोहब्बत है तुमसे, ये कहना नहीं आता है मेरे दोस्तों, ये कहना नहीं आता है। बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना हमें रहना नहीं आता। तो पेश किया जाता है यहाँ आपके लिए सत्यानंद रेखा एंड बाबूराम जी। बाबूराम ठुमरी ठुमरी स्टाइल में यहाँ हम सुनेंगे बैठक गाना।
1: ए जी कभी बजावे बांसुरी और कभी नचावे मोर, कभी खेले सखिया संग की मोहन।

खबर है पुकारा तुझे, आ जाओ मेरी जसोदा लाल। ओ सखिया सब रहे।

0: शाबाश शाबाश शाबाश जमुना किती सत्यानंद जी के आवाज में हमने सुने हैं और यहाँ से तैयार हो गई है आपको सुनाने के लिए श्रीमती घिसाई दुबे जी।
1: पाकर राम मोरे सोने के खड़ा हुआ,
0: अरे वाह,
1: आए गई ले बनिया दुकान मोरे रामा, आए गई ले बनिया दुकान मोरे रामा।
0: कितनी सुंदर सी आवाज में सुना रहे हैं।

हाँ घिसाई दुबे, श्रीमती घिसाई दुबे जी की आवाज में हाँ काफी सालों के बाद आपको सुना दी है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से। आपका पसंद हमारी चाहत बन जाए, आपकी पसंद हमारी चाहत बन जाए, मेरी जिंदगी में खुशियाँ, मेरी जिंदगी में खुशियाँ की बहार तुमसे है, जीवन में उमंग का संचार आप ही से है।

शाबाश, कितने अच्छे ढंग से ये बैठक का नाम है या एंड होता है ना टम क्लार। उस्ताद बहाओ झिनकू, इनका जन्म दिए एक इनका जन्म हुआ है 12 मार्च, हाँ इनका जन्म हुआ है 12 मार्च 1924 के ये उस्ताद। वेल बकेन द टोनेल स्क्राइफर एक्टर म्यूजिकांत सांगर एंड लीडरन टेक्स्ट स्क्राइफर इन सूरीनाम। ये एक एक गो बड़े बड़े उस्ताद था उन समय के लिए, जो अपने से अपना गाना का टेक्स्ट अपना गाना लिखते थे। ऑपरेक्टर एंड लीडर फॉर द पॉपुलर, हाँ द पॉपुलर 9 लाख हार संगीत समाज। हमारे बुजुर्ग जो है सुनते होंगे तो याद करते होंगे, हाँ ऐसा था। बकरों द दिल नाम आन फर्शकेल द सॉन्ग कॉन्टेस्टन हेफ्ट फेर तीन टोनेल स्टोकन ऑप्से नाम स्थान वार उंदर 9 लाख हार एंड बेटा हो तो ऐसो हो। इन द लेर खवेस बैसन गुरु तमन बहादुर आन वी है खार न होल्ड ब्राख। तो ऐसे बड़े बड़े उस्ताद था उन समय पे जो ऐसे मधुर गीत हमारे लिए ऑल दिस गोल्ड छोड़कर, और शरीर तो छोड़ गए पर आवाज आज तक है ताजा। इस बार सुनेंगे जॉयस हरीश की आवाज में।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, यानी भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हरी रय से स्वागत करते हैं। और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप सभी को भी

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। तवड़ हाउस है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लता जी की आवाज में ए मेरे दिले नादा।

फ्रॉम द मूवी तवर हाउस से भी हमने पेश की है, ए मेरे दिले नादा तू गम से ना घबराना। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं, तुम मुझे यूँ भूला ना पाओगे।

आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का से हमने पेश किए हैं तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे। लोग अक्सर कहते हैं कि तुमने अभी देखा ही क्या है। मैंने देखा है घर कैसे बिखरता है, अपने एक पल में कैसे पराए हो जाते हैं, मोहब्बत कैसे मुंह मोड़ लेती है, ख्वाब कैसे मरते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने ही लोग किस तरह बदल जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं याद न जाए बीते दिनों की फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर।

फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। इसी फिल्म से हमने पेश की है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में याद न जाए बीते दिनों की। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने हमेशा खुश रहे, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी गाइड से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, फ्रॉम द मूवी गाइड से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। अगर आप किसी को अपनी खुशी में याद करते हो तो आप उस इंसान के करीब हो। अगर आप किसी को गम में याद करते हो तो वो इंसान आपके करीब है। भरी दुनिया में आखिर दिल

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया है ज़िंदगी, चलने का नहीं सही संभलने का हुनर तो आ गया। लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी गीत से आप सुनेंगे द टाइटल।

के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी गीत से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शारदा जी के वास्ते। जबकि शारदा जी ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो शारदा जी आप ही के नाम हम पेश करते हैं। गीत का बोल है, मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पारस मनी से।

मेरे दिल में हल्की सी, लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी पारिस यानी पारस मनी से हमने पेश किए हैं, और ख़ास करके ये गीत हमने पेश किए हैं शारदा जी के वास्ते, जबकि शारदा जी ये प्रोग्राम को सुन रही है। मोहम्मद रफ़ी जी, हाँ सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।

अभी आप सुन रहे थे छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, अनीता है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा ना बाबा, पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता, लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे गुलाबी साड़ी फ्रॉम द मूवी धमाल टू से हमने पेश किए हैं। जरा सा हम देखें तो ये सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं,

अभी आप सुन रहे थे गुड़िया चुराना मेरा जिया, धमाल फोर से हम पेश करते हैं इसी फिल्म से फुलौरी बिना चटनी चलो ये भी हो जाए।

0: अभी आप सुन रहे थे फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फ्रॉम द मूवी धमाल 4 से हमने पेश किए हैं। श्री तू है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते।
1: वो नहीं आने वाले, वो बेवफा छलावा थी।

फ्रॉम द मूवी स्त्री तो उसे हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है, सावन में लग गई आग।

फ्रॉम द मूवी जेनी विथ सनी, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं सावन में लग गई आग दिल में रहा है। स्त्री तू है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे आज की रात।

फ्रॉम द मूवी स्त्री टू से हमने पेश किए है आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। धमाल फॉर इसी फिल्म से एक और गीत हम चलाएंगे आप सभी के वास्ते, पैसा लाओ।

From the movie Dhamal 4 से हमने पेश की है बैसलाव, पति पत्नी और वो है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रूप दीरानी

अभी आप सुन रहे थे रूप दी रानी फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो तुम ही हो बंधु। हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल्ली से दिल तक।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से दिल तक, ये सॉन्ग हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। रुत्वी पांडे की आवाज़ में हम पेश करते हैं घाघरों।

अभी आप सुन रहे थे घाघरो ऋत्वी पांडे की आवाज़ में इश्क से आगे ये न्यू सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे इश्क से आगे। सुनने वालों, समय हो गया है विज्ञापन का।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारे प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज़। Have a blessed Sunday and take care of yourself. Till next time.

Kala ne jaane unchinich, kala ne jaane jaant, Saraswati Mata dijiye humko apni aashirwaad. तमाम रेडियो फाउन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी आदाब शास्त्रीय काले जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज का देश और विदेश की समाचार को सुनाना है हमारा काम यही है हमारा ये मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम

तो दोस्तों हम तुरंत चलते हैं, और कहां चलते हैं? हम चलते हैं सूरीनाम की ओर और फेहापे की ओर। फेहापे की ओर यानी कि वहां पर अब फेहापे की बस्ती जो है हमारी जनता जोर तोर से काम कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं यानी कि फोर सीटर चुनने को। तो इसके बारे में फेहापे का पार्लियामेंटेरियन है और वो है मुफराव कृष्णा मथुरा। वो बोले है इस बर्रई थे फोर सीटर्स का फंड फेहापे ओवरवेगन indien zij vanuit de partij en verschillende structuren wordt gevraagd zich kandidaat te stellen. Bolle op bereid hij voorzitterschap leweke. Bolle jeb oké VHP ke kandidaat. Bolle stem kari top one up stem huiga. Kike voorzitter bani VHP ke. Bolle belangrijk huiga. कि बोले जितना स्ट्रक्चरन है एन ब्रूप दून बोले जालिक एन ओवरवेकन दल सालिक ना देंगन। इस बात मथुरा बोली से, और मथुरा बोले है फोलखंडे यार आने वाला साल में मई में फेहापे के बस्तूर फरकिसिंग होगा। मई महीना में आने वाला साल 2027 में हुई तो बोले है इर्दर दित यार बोले और फुर्सतर तुलन जानो है चांस तो कि उसका और दीवार प्लोसिलिंग ऊपर लेने में से। और बताए गए है जहाँ पे हम लोग के फोर सीटर्स का वार्नीमस तैलक ग्लेन उलर्स आन ते वैसन आन फोर सीटर। और मथुरा खलूफ एर इन इधर खफाल वेल कि फेहापे एगो जबरदस्त एगो स्टर्कर लेदर सवन किसे करेगा। और बोले हैगा फेहापे बोले बहुत स्टेबल है स्टर्क हैगा। बोले आल्स वेर अ स्टर्कर लेदर सुलन हेवन hoofdverstuur betalen VHP ke, ki bole 76 jaar VHP ke bestand hai, aur bole VHP bole doormaak in de samenleving bole narm garam ooch neech bole sab humne mee maak kar chukli baati, aur bole VHP uiteindelijk ke go sterker terugkom bole phir se terug aaye ekar bare mein under voorzitter jo hai VHP ke Ashish Kumar Gayadin wo bole hega binnen de partij zijn die bij hem aandringen ki bole hum bhi voorzitterskap bole ki kandidaat aanstel kare koi bole tenzij je sab koi hame kise kare tab, waardoor hij bezig is een goed team te zoeken voordat het eventueel zo een stap zet. और हूफर्स्टर्स के लेत महेंद्र गयादीन उस सफा बोले है बोले हम यश मांगिला कि पुराना मिनिस्टर जो है गणेश कुमार कन्हई बोले ऑफ अनखस्किक्त कैंडिडेट बोले हुए पार्टी लीडर के। और बोले हैगा फॉल्कस हम बस के कन्हई ओफन खुद से ही kent hij de VHP van binnenuit en zou zijn verkiezing geen slechte keuze zijn. Toen ik er bare mee op de voorzitterschap mee mee hoe ga verkiezing VHP ke op ke voorzitter benega en bole hega het volk en dat heb ik mijn hele leven gedaan. Bole 45 jaren dien ik samenleven al en ik zal blijven dienen vanuit elke functie. और ये बात बोले है मथुरा बोले है उत्तराधीन से बोले हम बाटी। तो ये बातचीत है फेहापे के ऑन्ट्विकलिंग के बारे में आप लोग को हम बोली थोड़ा से बताए दे भैया। सूरीनाम देश में यहाँ तो हॉलैंड में जगह जगह है, सूरीनाम देश में तो भी वहाँ पर भैया फ्लिट्स पार्लर लगल है चारों बगल। और फ्लिट्स पार्लर भैया जाने कमरा मस्त है, एगो ओ तो जाए के कमरा मस्तुए में मार दी भैया। ये बात तो कभी न्यूज में हम ना पढ़ ली है, पाल तो काटे है बाकी जहाँ पे कैमरा धरल है मस्तुआ वही में जाए के ओ एगो ओ तो भिड़ा दी भैया। सेफ्टी सिटी कैमरा मास बस्तू दवान एंड फूड तो एक इस नतीजे स्वार बस खादक में से एगो बॉक्सिंग भैल है
अब तावे 16 तारीख अगस्तस के अतवार के एको सेफ सिटी कैमरा मस्त है अंतोन द्रख्तर वेख बोनी स्ट्रात में ओए मेगो 48 यार के आदमी जाई के बिको स्ट्रात से निकले सेंट्रम से जाई के कैमरा मस्त में मार दे भैया तो ओके खा तो अब बवेश खोजे के ना है वत हुआ पे सब लिखल है अप लेवल है कि कैसे भैया जाए के और भिड़का दी से अपन ओ तो इन से देखा अरे इनिंग भाई ये बातचीत हो रहा है हमारा सिरना में पीके के तुलन जाने भैया अक्तिफे से पीके चल गए पहले रहा एनडीपी में एनडीपी से चल गए हैगा अब बप में अब बड़ा बात बोले हैं सिमोन के रखेरिंग सिमोन के बोले उस सब कुछ ना दिसवा बोले बनाई पाई से कई हार्ड बोल से रखीन जिमोन के बोले खाली पोप के हिया से हुआ घसकावे है जाने तो जैसे स्काक बर्थ पे बहुत बोले रहा ऐसे बोले खाली पोप के हिया से हुआ घसकावे है अले पोप सेंशन विश फॉर द रेस बोले उस सब देश हुआ में कुछ ना करे हैं रखे रिंग रिसलान के और सिमोन के बोले हैं एक बरिस उस सब हो गए है और बोले एक कोई चीट न फरांद नौलिक्स बोले हम लोग अपर पटमुनी में मेरक कर पाइला बोले रास्ता रास्ता सफा हुए है दाम उम तरी बने हैं बोले दस वेल नि शख बोले उल्लांटी के काम ही करे के बोले बाकी ओंतविकलिंग देसुआ में एक को बुन न लाई से बोले फ्रॉइड खांग जोन हम लोग के सलार से दुकान में जोन प्राइस से फर्स्ट बस्तान द सीकर है थे कंसर्न फॉर ब्यूरोक्रेसी नाम ये Juist daar ziet hij volgens eigen zeggen, bolle geen wenselijke verbetering. तो पीके एक बारे में बोले दोस्तों बोले हैं रखेरिंग बोले कुछ ना करे है बोले स्टेफर चेस फॉर विसलन आंध्र पॉलिटिकल फुकुरन सेटर ऑफ द पोस्ट इंटरवेल बोले वही पुराना कल्चर बोले वही मशीनियां चले है बोले बवेर करे है बोले पॉलिटिसी एंड पॉलिटिक्स पोल्सरन टेन खुद कोमन इन प्लास फन रेक्स ट्रीज द बफोल्किंग मां बोले एक को फरंदरिंग ना है Coalitie kreeg langs PK, stelde minister in praktijk. Eerst partijbelangen, bole appen partijbelangen, bole regering wakker he. Maar bole janta ke belang me bole usap huana baitale. Pahle okar partij ke admi ke chahi. यारे की फोर्डील बनावे के द खसंत है सड़क एंड अंडरवेज बोले हैगा जेनिफर सिमोंस के बोले है ग्रोथ टेस्टन मिशी काबा फॉरक्स फसंत के जो मिनिस्टर है सेल्फ एन फॉर द ग्रोस्ट ब्लंडर बार रखेरिंग के भैया मिशी काबा के जो पास्टर है और नाचत आयल है उसेर में और के सबन मिनिस्टर डायरेक्ट बना दी से भैया अब बोले एक को वार्ता ना होकर बोले अंडरवेज फॉलोस गेसोंथेड गेसोंथेड सोर बोले निच स्टीफ ऑफ ऑर्डर वर्डन खबरा बोले है स्प्रेक दार फन फन एन फॉल्स स्टार्ट सिमोन दिस रूट मूत रे शफल बोले सेल्फ सिमोस के चाहे निकल जाए के ओके चाहे सेल्फ रे सफल होए के पीके बोले है बोले रखेरिंग से एक बरिस से बोले उस बैठल है और बोले बेर बेर अपन प्रॉब्लम वा घसकावे है फोर रखेरिंग जाए के लुका है के उस सब चीज करी से बोले हम लोग जो एरफ कली बोले उही के से नरी दरी इज सिंपल वी कंपाइन फूड एंड बिलीव दैट बेटर टू डू Weet vooraf welke problemen er liggen. De kiezers heeft de nieuwe machthebber juist geschoven om de puinhoop op te ruimen. Achteraf blijven vertellen waar het allemaal fout was bij de vorige regering. Orgas KWK, Santoki, Brunswijk, regering problemen wakker is. Obole toe de lele politiek, dan moet je toch weten. Wat je allemaal staat, Lunjano Bija. और फुटबॉलर्स गैला भैया नीदरलैंड से और देश से सूरीनाम में और सबके मिलल रहा डायस्पोरा के सूरीनाम से पासपोर्ट मिलल रहा तो यहाँ पासपोर्ट क्वेश्चन फंड डायस्पोरा फुटबॉल का दीज बाई स्टार्स बसलोइट खरीगल्ट वार्डन वन सीमन बोले पासपोर्ट तो सब इंटरेक्ट चाहिए हुए के और बोले बलवा तो दोनों ही गए तो ये सब खिलवाड़ करे है पासपोर्ट से भैया बोले हु फॉर द वेट नेशनल है
overheid. Bolle 14 augustus keer 2026 tijdens vervolgbespreking. Commissie Naturalisatie van Nationale Assemblée DNA. Ik erbaar hem met ja. Bolle de SVB is gevraagd de voorgestelde wijziging te verwerken zodat het concept van de wet op korte termijn kan worden ingediend. Dus toe de jebante voetballerske barimie.

तो दोस्तों अब देखो, एक फिल्म प्रोड्यूसेंट है जिकर नाम है लेस्ली यार, फिल्म रोडनी लाइसनर तो ये है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट है और इस सूरीनाम देश में गया और शनिवार से ये गुम हो गया मैं से इस फरमेश सातरख आफों से एक पता ना है ये कहाँ है। उसके परिवार उस सबके दोस्तों जो है बोले फ्रिंदन एंड आंध्र बर्त्रोकन हैवन सिंस रात के ओके सब ना पाई से द्रिंगन बरूप करेगा ओम आन है पब्लिक ओम ऐट कैक नारदमान क्यों कहाँ है दोस्तों ओके सब खोजे है बफोन लाइसनी सातरदा के रात के शर्मा का गए लहा फोर अन वर्क ओफल है और बोले दैट इज द लास्ट प्लग वर है फोर सो फेयर बकेंट इसके जीन ओकर बात में बोलो कर टेलीफोन है कोई ना उठा ना उठावे है बोले सौंदर्य सुतान ओकर औरत लड़कन फैमिली कोरी का सब ओके खोजे है। तो दोस्तों अगर ये आपको मालूम है तो आप इकर बारे में जरूर जरूर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए सिपाही से। तो ये बात है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसर के बारे में हम आपको बताते हैं। एक लाश मिला है दोस्तों, एक लेक मिला है या बता रहा है ब्रैनन डालवेख में एगो मलाई के नाम है दोस्तों 58 यार का रामोन केरतो दी क्रोमो तो एक लाश लेक मिलल है सवेरे भैया अबैत हीफ आन खतरोखन ओकर भाई गए लेते कि से केरतो दी क्रोमो सोंदाक नौखसीन अबे अतवार के ओके बोले हम दिखली है अब ओकर लाश जाए के लेक मिलल है और बोले हैगा अर्स had twijfels over een natuurlijke doodstraf, doodoorzaak. Bolle hij constateerde onder meer blauwe plekken op het lichaam en bloed dat uit de neus kwam. Terwijl in natuurlijke dood na hij, ook er naak me zich groen bijl hij, en ook er dehi me blauwe plekken hij, de ikker banen me. Forensische opsporingdienst in schakel bij de onderzoek werden vooralsnog in braak garoa met nabijl bolle letsel op het lichaam zijn vastgesteld en bolle beslag genomen de zaak is over via te patamilel एक नतुरक ई दौत से न मरल है। अब देखो भैया को नवा देना खबाऊ है, हाँ ई नौका देना खबाऊ है। ई है भैया और नेशनल असेंबली के एगो मीडिया हैंक आरोन स्ट्रांत में वो नवा देना खबाऊ है न्यू देना खबाऊ है। तो हूँ आप एगो निगम फिर तक यार के आदमी काम करत रहा उतरे में भैया उन नौका दिया ना खबाऊ में काम अदमिया गिर गए और सब एक ले गए भाई और ई अदमी जो नहीं फिर तक यार की है ये भैया अपना दम को थोड़ दिया है। तो ये बड़ा दुख की बात है, काम करते में बेचारा गिरल है और ये आदमी मर गया है दोस्तों। अब देखो भैया बोमा वेख के बातचीत है, संतो बोमा के बात है। एगो 19 बरिस के आदमी यानी कि निखन तीन यार के एगो प्रोफेसर हैगा प्लॉट सेलिंग भैया। अब एगो बस आई को बोमा वेख में बोले टाइडेंस है केरन बोमा वेख में एगो बस ओके मारी से और ये लुंडा निखन तीन यार बालगोबीन डीफेंस बालगोबीन और अपना आंद्रेंडिंग भैले भैया और बोले द यंग मान बोले ई अतवार के दुई मिला से प्रोफिस पे जात रहा और बोले एगो त्योता हिशाई फिशर रहा और बताए गए है बालगोबीन ओफर बोमा में खरीद इन द रिक्टिंग फॉर मोहम्मद रशीद पीर खानवे तर होते
Ego pantelijke wil hij vermoedelijk een rechtswaartse stuurbeweging hebben gemaakt om te keren. Is het man is gumawe. Tijdens deze manoeuvre kwamen de bromfietsen in botsing met de auto ooit is oud. Hij is nakjalker is door 20-jarige door de harde klap liet de balgobin ernstige lensel op. Op wil hij overleed mensen jammer. 29-jarige Lundake die hand hoe ja he bouwdoekje baante bolesiramse rijbewijs verkeerde tijden van de anderen niet onder invloed doen we zwarte lautra udaru na pilera bhaiya oor bichara ke die hand hoe ja bahut arreding hoe bronfise bhai Suriname met cadensie ke tulon jano he feya peyer he cadensie bole ding no kinka next Simons bole traha bole wo kinka isisteem baki isisteem kinki na bhaile bhaiya ikar bari me artis bole cadensie bole Volker Arnold Bukuru okar naam ba Artes ook naam cadensie. Bole regering uit om iets te veranderen uit de lijst van beloften die zij tijdens de verkiezingscampagne heeft gemaakt. Cadensie stelt dat dezelfde coalitiepartijen zware kritiek hadden op VHP. Is op kritiek krijgen op VHP. Kemba bole apre. Bole kuchna karise. Admi ke je ungri de kaya bhaiya. De char go tor kanti awe hai. Dus ego kar kanti ma char go tor kanti de kha hai. Je koi upar je ungri de kaya to kosis kariyo. Kosis kariyo ki tu apan kaam hoi se kare hai. Leki Simons Ruslan apan kaam na mooi kare hai. Cadensie bole hai. Belasting toegevoegde waarde BTW werd ingevoerd. Iets meer dan een jaar regering Simon. Verder is geen van deze zaken echter teruggedraaid. Belasting doen bolle hamloon. Zo kie lagaira is een manger dat ze terugdraaikere. Maar ik kon terug naar draaikere. Is ik belasting en ben ik naar hoofd te bereiken. Bolle hij zit dan aanhouden de steking. Doek aan met prijtjar het jahe. Bolle den ook kinkie. Next me het dag regering die zie uit Mickey den kinkie one sunny. Chan was niet goed toen hij alle subsidie afschafte. Laat deze regering het dan weer terugzetten. Laat mijn BTW weer train trekken. Dat mik ding bing. Regeer dat die Chan ben pina afvolg. Bole Chan dhareraan BTW. Chan subsidie sub aftrekken. Laat deze bolle tra na mooi kaam kadise. Bole wo kinka systeem. Te bole aptoke chahe BTW ya terugtrekken. Kijk je met BTW naar hoeverke, want Chan dhaleraat toen om bolle raha namo je te kinky karna, bolle hega subsidie joan Chan sab intrek kaleraat bilo ke des ke paisa bachawe kati, te bolle kahena tu pin subsidie kare he, bolle kuchi sab na karise, Santoki Brunswijk 2020 me, bolle financiële ravage joan isab kaleraha heeft overgenomen, bolle hega euro IMF se bolle op programma Chan Santoki Brunswijk kaleraha. De huidige regering heeft echter geen IMF-programma om uit te voeren, maar desondanks zijn verbeteringen niet merkbaar. Bolle is op te verplicht binnen IMF het programma verbeteren en volgkrijgen. Bolle toch is er bolle kutschraker paise. Bolle hega komen jullie het volk uitleggen waarom jullie hiermee doorgaan. Al dus VHP'er, cadensie vindt het jammer. Die janta joan he, politieke partijen houden dan van Surinaamse volk. Als voorbeeld noemt hij het geval van massale vissterfte joan sarmakame bhail he. Of bole officiële oorzaak kan worden aangegeven. VHP'er bole he, bole de staat in brand zou zijn gestoken. Dat komt volgens hem omdat een kritischer is naar de VHP toe. To yes babat cadensi bole code root ini a her kondre abode aldus cadensi dosto to aap log ko hum ek geet sunate hai to abhi hum turant wapas aa jayenge

और जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। तो दोस्तों, तो हम चलते हैं और आगे को अपन समाचार को लेकर हम तुरंत चलते हैं निकेरी की ओर। दोस्तों, वहाँ पे निकेरी में, निकेरी की ओर हम आप लोग को लेकर चलेंगे। तो निकेरी के जोन देसी है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से निशा कुर्बान बब्बू, निशा कुर्बान बब्बू देसी है निकेरी के। और उमांगे हैगा निकेरी में और काम होवे। मेयर वेरक माकर फान बेहतर वीखन रास्ता जोन है बोला और बेहतर चाहे होवे के। और बोले जोन यंगरे है उ सबके काम भी चाहे मिले के। वेरा खलीखन है भी चाहे होवे के। बोले जो हाउस फेस्टिंग है बोले राइस सेक्टर के ऑन्टविकलिंग बोले सब चाहे फॉर बेहतर होवे के। बोले फोकस हार इस हिन एंकल सामे लीफे ओइट 100% अफ एंड मुतर ओवर है instances en burgers gezamenlijk blijven werken aan de vooruitgang. तो इस सब चीज तो बड़ा बढ़िया देसी सोचे है। और अब सोचे तो बाटो तो अब चाहेगा देसी के करे के। कुर्बान बब्बू बोले है बोले आद शांत वेखन मुतर ओक आन खपाक वर्दन बोले वेखन ऑथोरिटी कर वर्क इन मेडिस इन फर्किल ट्रायक्टन। और बोले हैगा कुर्बान बब्बू बोले है देसी बोले ना दुक्रिक विल इन सेटर फॉर यंगरन। और बोले फॉल्कस हार मुतर बोले मेर बानन और वेर खरीगन है चाहे हुए के निकेरी में। स्लाइस जोन है भैया बोले बलांगरेक फॉर राइस सेक्टोरन। कुर्बान बब्बू बोले है बोले बलांगरेक प्रियोरिटी थेगा जोन स्लाइस है चाउर के जोन धान अदमी बोवे है ओके सब रीनो फेर करे के। बोले दृंगत हेयर स्टाइल नो उदक है नो सेक्टर फर्दर कुनन ऑन्टविकलन। तो बड़ा अच्छा बात है। तो यहाँ पे बताए गए है बोले है बब्बू बोले है कुर्बान बब्बू बोले है बोले ऑफ द अखेंडा ऑफ द मार्क इज फॉल्कंस आंध्र इनोवासी तो जो बाजार है वो चाहे रीनू फेर करे के। बोले द आंध्र कनाल पॉइंट इज ए टकोर्ट ऑन फक मेंशन फक मैन से बोले बहुत कमती है। बोले जोन बहु में बा अब रई सेक्टर इन इंस्ट्रक्टर दान आरबेस क्राफ्टन फॉल्स दिस ही मुइलक इज टू फिंडन। कुर्बान बब्बू बोले है बना दृक्त दैट दे नीड अलेन इन के स्पेल मार अन लैंड के प्रॉब्लम इज मेड दैट फॉरवर्ड द बैटलांसा आरबेस क्राफ्टन आंगेट्रोकन और दिस ही रूप द सामलेफ ओ मिंदर एनर्जी टू स्टेकन इन नेगेटिविटी एंड अफब्रेकन फ्रॉम एल्कार एंड क्रिटिक इज फॉलोड दैट इक बब्बू यानी दिस ही heeft een goede gevolgen mensen. Alleen als hij waar kan maken. Paiswa hij kina hij mevrouw. DDC daar gaat het om. Dat gaat het om mensen. En meer niet. Dus dat is de zaak een beetje. अब देखा जाए भैया हिया बतावे त्रिम कोर हम तरी जाए बैतलान के चीवा बताई त्रिम खराब ओवर अनेक्साक्सी स्ट्राट फॉर हॉर्मोन्स ना नीदला फन ईरान। हाँ अमेरिका बोले है तुलन जाने स्ट्राट हॉर्मोन्स के बारे में जहां सब बोर्ड पास हुए है बोले उखरोन खबितवा जो ने बोले चाहे अमेरिका के हो जाए के अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोले है बोले है वन विल फरक्लारन दैट ईरान इज वर्सलागन है दे द ऑपमर्कलिक उपस्प्राक फ्रागन टाइडेंस बाय इन कोस बाय इन पॉलिसी एकेडमी इन अमेरिका न्यूयॉर्क में द हुगो फिशनारिस फन Witteheid verklaarde later tegenover Amerika dat Trump een grap maakte en dat er geen plannen
voor een dergelijke stap zijn besproken. Bole us grapker traha ki hormus oker ho jaiga Amerika ke. Bole sai to ko droom hoi te mo mase nikarenge hoi bhaiya to lon jano hai. Use pasar Groenland me go bedrijf se hua teel khode hai. En dat mag ook niet mensen nadat we Iran hebben verklagen dat een zware nederlaag lijkt. Zal ik de straat van Hormuz binnenkort Amerika's grondgebied verklaren? Zei Trump. Daarna voegde hij ernaartoe. Het is echt waar. Trump herhaalde ook zijn eerder bewering dat Amerika bole Amerikaanse maritieme blokkade waarmee de scheepvaart verkeert, Iranke haven mee wordt tegengehouden. Iran beslist dat de VS de controle over de straat van Hormuz hebben. Bole het scheepvaartverkeer is door de zeestaat sterk teruggelopen. Hormuz

opbouw, het geld zal naar de verwachting worden gebruikt voor het repareren van de beschadigde scholen. Kebare me naki ghar me dharie paishwa kunu sangarese bhaiya miljonair hai to 1 miljoen dega. Skulia ke banave ke bare me hamare janta. आप लोग को बताइए भैया एसएलएम के बारे में बड़ा क्रिटिक है एसएलएम के बारे में एसएलएम रिएक्ट करी सेगा और ब्रेक ओवर खाओस samenstelling en functie van de RVC volgens directie is dat ongewijzigd. SLM kebare me. Oh, SLM Surinaamse RWC bhaiya raad van commissaris doen bole hega aanleiding voor de reactie bole hega online publicatie hega sora tarike joan ware tijd dhari se bole hega chaos raad van commissaris SLM me o bole hega naar de aanleiding daarvan bole directie bole gezamenlijk kennis te nemen van een bericht geven of bole hega ook de functie binnen de raad zijn volgende maatschappij bole kuchna verander bhail hai to bari lamba chowda SLM ke baare mein likha gaya hai hamari janta to hum bole aapko kuch chota roop mein aapko bata de bhaiya 9 aadmi ke Suriname desh mein 9 verdachten veroordeeld in zaak vermissing van 2 mannen doe je aadmi laas bhail hai okar baare mein bhaiya 9 aadmi ke saban pakdi se बतावे गए इसे पड़का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्कूलन ते हैवन खमाक आन देनाम आन एन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बरेडिंग हैंडलन मेट बत्रेकिंग ऑफ द वेट फन फॉर मिडलन uitvoeren van cocaïne of een poging daartoe dan wel hen aanwezig hebben van cocaïne te OM 50 jaar mangen hè aanbaris ke jal mangen hè to isab ke bhaiya jal milal hai to jaise rahega iske bare mein aur aage batayenge bahut bahut lamba chauda iske bare mein bataye gaye hain jo aap log ko hum छोटा रूप में बताएंगे हम जाते हैं अफ्रीका के ओर भैया कोंगो में हम जा रहे हैं तुरुआ पे बहुत बड़ा बीमारी है चलल है एम्बोला के बारे में आप लोग जानो हैं कोंगो में है दो लक्ष से ओइट इन हिट लैंड इतना आदमी न मरल रहा और देखता जनता अब की मरल है भैया और ये बात है रिपब्लिक कोंगो में बोले 2325 आदमी मेंशन से लीफन को कोस एम्बोला से दौलक इन खस्कीडिंग जो अमेरिका अफ्रीकांस लैंड के है कोंगोलांस खतों से ओ ने ऑथोरिटीटन बोले 4945 आदमी बस में भइल है और ई दो दिन लाख मिडल्स होकर रहा जो 2018 और 2020 में रहा उस समय पे 2299 mensen maar Allah op betawe daarmee dodelijkse Congo ooit heeft meegemaakt abole abki aur jana maral hai dosto to iske bare mein bhi bahut lamba hai aap log ke hum mul mulle baat batate hain ki itra janta maral hai aur wo hai Congo mein hamare pyare pyare janta जो एक बीमारी है एम्बोला सब बोले है हमारे जनता तो हम चलते हैं और आगे को अपना सूरीनाम के समाचार को लेकर भैया वोनन ऑफेट वाटर नीदरलैंड के बातचीत है इस नित खुद को जानो यहाँ नीदरलैंड में चलियो तरीबा में मतलब पानी में बोट है वो उन बहुत जहाँ आदमी रहे हैं तो कितना आदमी बोलो तो घर द्वार ना है बोट पे घर बनाई के और वहाँ रे माँ दत इस नीट खुद को मेंशन वो उन बहुत इस दूरदर दान अन है हाँ तो जेके मालूम ना है तो अब हम बताओ थे
आप लोग तो यहाँ Den Haag में और कहाँ कहाँ पे जानो है कि पानी में घर बना है वही पे सब रहे हैं, तो यहाँ बताए गए वो बोतन लेकिन इन मेरल जना है कि खुद कूप है मैं जो घर में हम लोग रहेला उससे महंगा है वो है पैर फिर कांत मीटर एगो बोट के बताल ये फोर और वो यस 20% और ज्यादा भरिए जो हम लोग घर में रहेला हमें दल एगो बोट भी कहा है भैया 466,000 euro और हमेरल एगो घर भी का है 494,000 euro बताल फॉर रेगुलर वोनिंग और बताए गए हैं वोन बोतन सेन इन मिडल 494,000 vierkante meter ग्रोथ tegenover 118 vierkante meter boot ego gemar hai ongeveer 94 vierkante meter hai aur ego ghar hai ongeveer 118 vierkante meter to bole use dekhiye to botiya aur mahanga pare hai 20% meer vierkante meter bij een gewone woning ligt de prijs op bijna 7,500 ek vierkante meter to kiniye तो बताए गए दोस्तों आलो वोन बोतन जो 2025 में रहा हूफ्स्टाद में verkocht laag in de hoofdstad Groningen, Rotterdam, Haarlem mee zijn er relatief veel verkocht van al Jarabikal Henga, Bollega de Ronde Veen, Wormerland, Weidermeren mee worden naar verhouding eveneens veel woonweden verkocht mensen. तो कितना आदमी सोचे है कि हम बोटियन में जो घरवा बनल है वो सस्ता है मार आशीषित मेर फिर कांत मीटर इस दात नो ट्यूर्डर में से दन ओ हम जाए तेरी रुसलांद की ओर जनता Opnieuw is een magazijn voor Ruslandse webshop Wilberis door een droneaanval geraakt. Omwille in het magazijn vlakbij de Russische hoofdstad Moskou mee onthoudt een brand die inmiddels is geblust, dat zegt de regionale governor te Rusland met via Oekraïne. Dagen op betek via 620 drones richting Rusland met Chalgi, Hamari Janta. En hier betalen Iran bole, bole straat van Hormuz. 19 augustus के ये बात 18 augustus के ये न्यूज़ है स्ट्रैट हॉर्मूस बोले पास ओपन आज फेयर्स फेयर्स अमेरिका हम लोग के जितना ऐस्ट है बोले सब देगा तब बोले हम लोग हॉर्मूस खोला हुआ अमेरिका दूसरा बात बतिया है ईरान दूसरा बात बतिया है ईरान बोले हम लोग खोला जैसे वही के और हुआ अमेरिका बोले जैसे वो कर है लेकिन अब के कर है दोस्तों ईरान तो यहाँ दूसरा बात बोले है ईरान से पार्लियामेंट फोर्सेटर बोले है टॉप ऑनर हंडलार है मोहम्मद बखर गलीबास बोले है एक स्पीच में बोले है Hij noemde het beëindigen van de Amerikaanse zeeblokkade, het opheffen van de sancties op olie en vrijgeven van de Iraanse tegoeden in het buitenland. Want tegoeden in Amerika is het buitenland mee frisker deze. Bole tap hamlo jaike kolab, bole pahle hamar, jitra sancties tokale oke kol sinds de oorlog 1 februari. Amerika, Israël. Aanval keren Iran koper, varen er nog nauwelijks schepen doorheen, die leidt wereldwijd tot hoge prijzen, onder meer voor brandstofmensen. Bolle in het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran was afgesproken dat de straat van Hormuz weer helemaal open zou gaan, maar dat is niet gebeurd. Dat akkoord is inmiddels verlopen. Iran onderhandelt met Oman over een veilige doorgang door de straat van Hormuz, maar dat betekent volgens Iran niet direct dat de zeestraat wordt heropend mensen. To Iran ijsje bole he, en Amerika kuch oisen bole he. Hamas ke oor jai bhaiya. Hamas tulon jane hega terror groep hega Libanon me. Hamas zegt verder te willen met proces
richting vredesdeal. Hoe ze mange vrede kunnen Iran, Israël zijn. Gaza stad mee. Hamas mange vredesplan kunnen Gaza mee. Of bole hega onderleiding. Je maar Amerika chahin reke. Of bole die steun is vooralsnog niet. Of bole hega schoonzoon. Je Amerikaanse president ke he. Heeft hier de voorbije dagen over gesproken met zowel Hamas als Israël. Woordvoerder Hamas bole he. Hamas kuzem bole he. Tijdspadden en procedurele stappen die nog in de jaar in de teel uitgewerkt zullen moeten werden. Oorlog tegen bhaiya Tulunjan op Pakistan ke oor hem jai. Op Pakistan me bhaiya oudjon president wakara premier ha. Oké jahal manse saban nikaris omdat u bemaar he. Tulunjan he am Imran Khan 73 jaar ke. Oké saban pakad ke ban kar le raha nawara khiring aile he. To hospital me bhaiya bahut bemaar he. O bole hega ho kharek Pakistan ke. Bole hega Imran Khan ke. Bole 2023 mee vast in veroordeelde in verschillende zaken, onder meer voor fraude, partijgenoten Pakistan ke, Tirik Izaan bole, familie maken zich zorgen over zijn gezondheid mensen, op bole hega, u bemaar he, hooggeruif moet gaan binnen 28 uur naar het ziekenhuis worden overgebracht, tot 16 september blijven. Obole Khan werd 2022 mee afgezet. Sindsdien is hij geconfronteerd met meerdere rechtszaken. Afgelopen december werd hij veroordeeld tot 17 jaar gevangenis voor fraude. Andere zaken gaan onder meer over massmisbruik en opruiming. De oud-premier ontkent alle beschuldigingen en noemde veroordeeld politieke moffiesmensen. To aap log ko hum ye geet ko aur suna dete hain.

और दोस्तों ओनली लवर्स के लिए हम कुछ नया गीत आज हम चलाते हैं। हम चलते हैं एक और गीत की ओर और वो है फिर भी प्यार करने वालों के लिए कि बिली बिली की ओर हम जाते हैं।

फॉर द लोफर्स के लिए आज कुछ नया गीत हम आप लोग को सुनाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं ओक एन रोमांटिक सोफा यार नीख तक भी एक दो को हम सुनाएंगे और बेस्ट लॉयस्टर लाइफ में प्रोग्राम लॉयस्टर के वो नहीं लेकिन नीखंत का सॉन्ग है जो और फिर से इसको गाया गए है, आओ सुना जाए।

और ऐसा ही लगता है जब किसी से प्यार हो जाता है तो हमारे यारो ऐसा ही होता है।

और चल चले झील के उस पार। और नाइटिंगेल लता जी का गाया हुआ सॉन्ग है और फिल्म के नाम है झील के उस पार। और नाइटिंगेल लता जी धर्मेंद्र मुमताज इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों

और पैसे की पहचान यहाँ, और इंसान की कोई कीमत नहीं है, और बच के निकल जा इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं है। और ये गीत जो हम चलाते हैं वो है राजकुमारी गजराज ते हैं, ये गीत है माइती मुकेश इस गीत को गाए है, आओ मिलकर सुना जाए, चल अकेला चल अकेला।

Calare già ne un cinis, calare già ne giant, sorsoti manta DJ, hamco apni ansir bande. तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी अदाम सस्त्रीय काले जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज का देश और विदेश की समाचार को सुनाना है हमारा काम यही है हमारा ये मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों हम तुरंत चलते हैं और कहां चलते हैं, हम चलते हैं सूरीनाम के ओर और फेहापे के ओर। फेहापे के ओर यानी कि वहां पर अब फेहापे के बस्ती जो है हमारे जनता जोर तोर से काम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं यानी कि फोर सीटर चुनने को। तो इसके बारे में फेहापे का पार्लियामेंटेरियन है और वो है मुफराव कृष्णा मथुरा। वो बोले है इस बर्रई थे फोर सीटर्स का फंड फेहापे ओवरवेगन indien zij vanuit de partij en verschillende structuren wordt gevraagd zich kandidaat te stellen. Bolle op bereid hij voorzitterschap leweke. Bolle jeb oké VHP ke kandidaat. Bolle stem kari tap wan up stem huiga. Kike voorzitter mani VHP ke. Bolle belangrijk huiga. कि बोले जितना स्ट्रक्चरन है एंड ब्रूप दून बोले जालिक है ओवरवेकन डल्ट सालिक ना देंगन। इस बात मथुरा बोली से और मथुरा बोले है फोलखंड यार आने वाला साल में मई में फेहापे के बस्तूर फरकिसिंग होगा मई महीना में आने वाला साल 2027 में हुई। तो बोले है इर्दर दित यार बोले और फोर्सेटर तुलन जानो है चांस तो कि उसका और दिवस प्लोसिलिंग उफर लेड में से और बताए गए है जहां पे हम लोग के फोर सीटर्स का वार्निमस तैलक ग्लेन उलर्स आन ते वेजन आज फोर सीटर और मथुरा खलूफ एर इन इधर खफाल वेल कि फेहापे एगो जबरदस्त एगो स्टर्कर लेदर सबन किसे करेगा। और बोले हैगा फेहापे बोले बहुत स्टेबल है स्टर्क हैगा बोले आज वेर अ स्टर्कर लेदर सुलन हेवन। Hoofdbestuur betaalde VHP die bolle 76 jaar VHP bestand heeft. En bolle VHP bolle doormaak in de samenleving bolle norm, gram, ootje, niet. Bolle sap hem nu mee maken, chukli bati. En bolle VHP uiteindelijk go sterker terugkom, bolle pinse terug hai. Ik er baren mee onder voorzitter John hai. VHP Asis Kumar Gayadin. U bolle hega binnen de partij zijn die bij hem aandringen die bolle hem bij voorzitterschap bolle kie kandidaat aanstel kere kui bolle tenzij je sap kui hem kiezen kere tam waardoor hij bezig is een goed team te zoeken voordat het eventueel zo'n stap zet. Aur hoofdverstuurske lid Mahinder Gayadin u safa bole hai bole hum yais mangila ki purana minister jo Ganesh Kumar Kanhai bole als een geschikte kandidaat bole hoe partijleider ke और बोले हैगा फॉल्कस हैम बस के कन्हई ओफर खुद से ही कैंट है दे फेहापे फन बिनन आउट एंड सो सेन फरकीसिंग हीन स्लेक्ट क्यूज़ ज़ेन। तो एक अर बारे में अब देखो फोर्सेटर्स का मई में हुईगा फरकीसिंग फेहापे के अब के फोर्सेटर बने हैगा और बोले हैगा हेड फॉल्क एंड दैट हैप ik mijn hele leven gedaan bolle 45 jaren dien ik samenleven al en ik zal blijven dienen vanuit elke functie. Oud iemand bolle he Mathura bolle he utradien se bolle hem bati. To ye baanchit he VHP ke ontwikkeling ke baare mein aap log ko hum boli thora se batai de bhaiya Surinam desh mein yahan to Holland mein jagah jagah hai श्रीनाम देश में तो भी वहां पर भैया फ्लिट्स पाले लगल है चारों बगल और फ्लिट्स पाले भैया जाने कमरा मस्त है एगो ओ तो जाए के कमरा मस्त हुए में मार दी भैया ये बात तो कभी न्यूज में हम ना पढ़ ली है पाल तो काटे है बाकी जहां पे कैमरा धरल है मस्तवा उहीम जाए के ओ एगो ओ तो भिड़ा दी भैया सेफ्टी सिटी कैमरा मास बस्तू द खवान एंड फूड तो एक इज नेचुरली स्वार बस खादक मेंसे एगो बॉक्सिंग भइल है
और बतावे 16 तारीख अगस्तस के अतवार के एक सेफ सिटी कैमरा मस्त है अंतन द्रख्तर वे खबोनी स्ट्रैट में ओए मेगो 48 यार के आदमी जाए के बिको स्ट्रैट से निकल ले सेंट्रम से जाए के कैमरा मस्त में मार दे भैया तो ओके खा तो अब बवेस खोजे के ना है वत हुआ पे सब लिखल है अप लेवल है कि कैसे भैया जाए के और भीड़ का आंधी से अपन ओ तो इन से देखा अरे इनिंग भाई ये बातचीत हो रहा है हमारा सुरिनाम में पीके के तुलन जाने भैया अक्तिफे से पीके चल गए पहले रहा एनडीपी में एनडीपी से चल गए हैगा अब बप में अब बड़ा बात बोले हैं सिमोन के रखेरिंग सिमोन के बोले उस सब कुछ ना देसवा बोले बनाई पाई से कई हार्ड बोल से रखी जिमोन के बोले खाली पोप के हिया से हुआ घसकावे है जाने तो जैसे स्काकबोर्ड पे बहुत बोले रहा ऐसे बोले खाली पोप के हिया से हुआ घसकावे है अले पोप सेंशन विश फॉर द रेस्ट बोले उस सब देश हमें कुछ ना करे हैं रखे रिंग रिसलान के और सिमोन के बोले हैं एक बरिस उस सब हो गए है और बोले एक कोचित नफरान नौ लिख्स बोले हम लोग अपर पटमुनी में मेरक कर पाइला बोले रास्ता रास्ता सफा हुए है दाम उम तरी बने हैं बोले दस वेलनी शख बोले उल्लांटी के काम ही करे के बोले बाकी ओंतविकलिंग देसुआ में एक को बुन न लाई से बोले फ्रॉइड खांग जोन हम लोग के सलार से दुकान में जोन प्राइस से बस्तान द सीकर है थे कंसन फॉर ब्यूरोक्रेसी नाम ये is daar zit hij volgens eigen zeggen wil geen wenselijke verbetering. तो पीके एक बारे में बोले दोस्तों बोले हैं रखेरिंग बोले कुछ ना करे है बोले स्टेफर चेस फॉर विसलन आंध्र पॉलिटिक फुकुरेंस सेटर ऑफ द पोस्ट इंटरवेल बोले वही पुराना कल्चर बोले वही मशीनियां चले है बोले बवेर करे है बोले पॉलिटिसी एंड पॉलिटिक्स स्पॉन्सर टेन खुद कोमन इन प्लस वन रेक्स थ्री इज द बफोल्किंग मां बोले एक को फरंदरिंग ना है Coalitie krijgt langs Piqué, stelde minister in praktijk. Eerst partijbelangen, bole appen partijbelangen, bole regering wat kreeg he. Maar bole janta ke belang me bole usap huana baitale. Pahle okar partij ke admi ke chahi. यानी कि फोर्डील बनावे के द खसंत है सड़क एंड अंडरवेज बोले हैगा जेनिफर सिमोंस के बोले है ग्रोथ टेस्टन मिशी काबा फॉरक्स फसंत है के जो मिनिस्टर है सेल्फ एन फॉर द ग्रोस्ट ब्लंडर बार रखेरिंग के भैया मिशी काबा के जो पास्टर है और नाचत आयल है उसेर में और के सबन मिनिस्टर डायरेक्ट बना दी से भैया अब बोले एक को वार्दना होकर बोले अंडरवेज फॉलोस गजोंथेड गजोंथेड सर बोले निच स्टीफ ऑफ ऑर्डर वार्डन खबरा बोले है स्प्रेक दारफान फान अन फाल्स स्टार्ट सिमोन डेसरूट मुत रे शॉवल बोले सेल्फ सिमोस के चाहे निकर जाए के ओके चाहे सेल्फ रे सफल हुए के पीके बोले है बोले रखेरिंग से एक बरिस से बोले उस बैठल है और बोले बेर बेर अपन प्रॉब्लम वा घसकावे है फोर रखेरिंग जाए के लुका है के उस सब चीज करी से बोले हम लोग जो एरफ कर ली बोले वही के सेन रेड रेनिंग इज सिंपल वी कंपाइन फूड एंड बिलीव दैट बेटर टू डू Weet vooraf welke problemen er liggen. De kiezers heeft de nieuwe machthebber juist geschoven om de puinhoop op te ruimen. Achteraf blijven vertellen waar het allemaal fout was bij de vorige regering. Orgas KWK, Santoki, Brunswijk, regering problemen wakker is. Obole to de lele politieke, dan moet je toch weten. Wat je allemaal staat te doen, Jano, bijna. और फुटबॉलर्स गैला भैया नीदरलैंड से और देश से सुरीनाम में और सबके मिलल रहा डायस्पोरा के सुरीनाम से पासपोर्ट मिलल रहा तो यहाँ पासपोर्ट क्वेश्चन फॉर द डायस्पोरा फुटबॉल कान देश बे स्टार्स बसलेट खरीगल्ड वार्डन वन सिमोन बोले पासपोर्ट तो सब इंटरेक्ट चाहिए हुए के और बोले बलवा तो दोनों ही गए तो ये सब खिलवाड़ करे है पासपोर्ट से भैया बोले हु फॉर द वेट नेशनल है
overheid bolle 14 augustus 2026 tijdens vervolgbespreking commissie naturalisatie van Nationale Assemblée DNA. Ik erbare mee wat ja heen. Bolle de SVB is gevraagd de voorgestelde wijziging te verwerken zodat het concept van de wet op korte termijn kan worden ingediend. Dus toe de jebante voetballers ke bare mee.

और जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। तो दोस्तों, तो हम चलते हैं और आगे को अपन समाचार को लेकर हम तुरंत चलते हैं निकेरी की ओर। दोस्तों, वहाँ पे निकेरी में, निकेरी की ओर हम आप लोग को लेकर चलेंगे। निकेरी के जोन देसी है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से निशा कुर्बान बब्बू, निशा कुर्बान बब्बू देसी है निकेरी के। और उमांगे हैगा निकेरी में और काम होवे मेयर वेरक माकर फन बेहतर वीखन रास्ता जोन है बोले और बेहतर चाहिए होवे के। और बोले जोन यौंगरे है उ सबके काम भी चाहिए मिले के, वेरा खलीखन है भी चाहिए होवे के। बोले जो हैस फेस्टिंग है बोले राइस सेक्टर के ऑन्टविकलिंग बोले सब चाहिए फॉर बेहतर होवे के। बोले फोकस हार स्किन एंकल सामे लीफिंग ओइट 100% ऑफ एन मुतन ओवरहेड इंस्टेंसेस एंड बर्गर्स गसामलिक ब्लेवन वर्कन ऑन द फ्रेडकांग। तो ये सब चीज तो बड़ा बढ़िया चीज देसी सोचे है। और सोचे तो बाटो तो अब चाहेगा देसी के करे के। कुर्बान बब्बू बोले है बोले आ द सांत वेकन मुतर ओक आन खपाक वर्दन बोले वेकन ऑथोरिटेकन वर्क इन मेडिस इन फर्किल ट्रायक्टन। और बोले हैगा कुर्बान बब्बू बोले है देसी बोले ना दुक्रिक विल इंसेटर फॉर यंगरन। और बोले फोकस हार मुतर बोले मेर बानन और वेर खरीकन है चाहे हुए के निकेरी में। स्लाइस जोन है भैया बोले बलांगरेक फॉर राइस सेक्टोरन। कुर्बान बब्बू बोले है बोले बलांगरेक प्रियोरिटी हैगा जोन स्लाइस है चाउर के जोन धान आदमी बोवे है ओके सब रीनो फेर करे के। बोले दृंगत हेयर स्टाइल नो द हेवन नो सेक्टर फर्दर कुनन ऑन्टविकलन। तो बड़ा अच्छा बात है। तो यहाँ पे बताए गए है बोले है बब्बू बोले है कुर्बान बब्बू बोले है बोले ऑफ द अखेंडा ऑफ द मार्क इज फॉल्कन्स आंध्र यूनिवर्सिटी तो जो बाजार है वो चाहे रीनू फेर करे के। बोले द आंध्र कनाल पॉइंट इज द कोर्ट ऑन फक मेंशन फक मैन से बोले बहुत कमती है बोले जो बहु में बा अब रई सेक्टर इन इंस्ट्रक्टर दान आरबेस क्राफ्टन फॉल्स दिस ही मुइलक इस टू फिंडन। कुर्बान बब्बू बोले है बना दृक्त दैट दे नीड अलेन इन के स्पेल मार अन लैंड के प्रॉब्लम इज मेड दैट फॉरवर्ड द बैटलांस आरबेस क्राफ्टन आंगेट्रोकन और दिस ही रूप द समलेवन ओ मिंदर एनर्जी टू स्टेकन इन नेगेटिविटी एंड अफब्रेकन फ्रॉम एल्कार एंड क्रिटिक इज फॉलोड दे क बब्बू यानी दिस ही heeft een goede gevolgen mensen. Alleen als hij waar kan maken. Paiswa hei ki na hei mevrouw. DDC, daar gaat het om. Dat gaat het om mensen. En meer niet. Dus dat is de zaak een beetje. To ab dekha jai bhaiya. Hiya batawe trim koor hem tari jai. Buitenland ke chiwa batai. Trump grap over annexatie, straat voor Hormuz naar Nederland van Iran. Ha, Amerika bole he, Tulunjane straat Hormuz ke baare mein jahan sab board pass hue he, bole Ukhron khabitwa jo ne bole chahe Amerika ke ho jaye ke, Amerika ke president Donald Trump bole he, en wil verklaren nadat Iran is verslagen. Hij deed de opmerkelijke uitspraak vragen tijdens een bijeenkomst bij een politieacademie in Amerika, New York. Mee de hoge functionaris van de Witte Huis verklaarde later tegenover Amerika dat Trump een grap maakte en dat er geen plannen
voor een dergelijke stap zijn besproken. Bole us grap karatraha ki hormus oker ho jaiga Amerika ke. Bole sai to ko droom hoi te mu mase nikarge hoi bhaiya to lon jano hai. Use pasar Groenland me go bedrijf se hua teel khode hai. En dat mag ook niet mensen nadat we Iran hebben verklagen dat een zware nederlaag lijkt. Zal ik de straat van Hormuz binnenkort Amerika's grondgebied verklaren? Zei Trump. Daarna voegde hij erna toe. Het is echt waar. Trump herhaalde ook zijn eerder bewering. Ki Amerika bole Amerikaanse maritieme blokkade. Waarmee de scheepvaart verkeert. Iranke haven mee wordt tegengehouden. Iran beslist dat de VS de controle over de straat van Hormuz hebben. Bole het scheepvaartverkeer is door de zeestaat sterk teruggelopen. Hormuz is van groot belang voor de internationale energiehandel. Op het eigen conflict passeren ongeveer 1/5 van de wereldwijde olievoorziening via deze route. Op het eigen nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Washington voert ondertussen ook de economische druk op Teheran. Verderop Amerikaanse minister Financiën ke bole week nieuwe maatregelen tegen Iran zal aankondigen. Volgens hem gaat het om stappen die het land economisch nog verder te isoleren. Mensen te Trump abbe bezigheid Iran ke bare mee. Hamari janta en wij lijden eronder om de dure benzine, de dure brandstof te gaan betalen, mensen. Abbe de ko Suriname mee. Arman Sundermange heen. Loonsverhoging. Al regering ze Suriname onderhandel kregen. Loonsverhoging ke bare mee. Go vakbeweging hega. Rafaksuur. To Arman Sunder John Hega woordvoerder en Rafaksuur ze. Mange he loonsverhoging van 25% lanti se. Maar lanti bole he bole ham toke 25 na de. Maar 10% ambtenaren salarissen structuur met 10% aan te passen. O bole hega vakbeweken bole he. Bole hega zo werd voorgesteld om de belastingvrije grens te verhogen naar 9000 naar 15000. Want heb je toch een nieuw jaar te toch je belasting bereken, te bole ook een grens te verhogen weken 15000. Volgens Sunder is dit voorstel op dit moment niet aan de orde bij de regering. Dat werd hen tijdens de vergadering afgelopen week meegedeeld. Bole uhamlo abenakar sakila. Bole er is geen sprake van de verhoging. Ja, hoi bhaiya. Ta haan to dal lage ki kursua chari. Maar ab dekho regering bole hem toke 10% debe. Lanti ke kam kartan ki verhoging. Aur hi mange hai 25%. Beste luisteraars, toe je maat he. Sunder ke ab dekho bhaiya. Colombia me aardbeving bhail he. आप लोग को तो इकर बारे में हम बताई है कितना लोग वहां पे मरल है 280 मेंशन है बद लीफ दार मेंशन और बतावे हैगा अन आरबीफिंग वा 7.4 kostte 280 mensen het leven, bijna 27 ghar gir gaye, verwoest hoe gaye, shahar kane barka barka rasta sab toot ke saka hoe gaye, jaise ko rasta ka naam ra Gali and Pereira, bole miljarden schade deswa me bhaiya, Colombia ke minister jo hain bole hai bahut kritik paaye se बीते हुए हफ्ता में और बोलेगा कराइबी से स्ट्रांड जो रहा आंतर इलेक्शन बोलेगा वीकेंड बिल्डर फर्स्कीनर वारोप तजीन इस दैट है ऑफ द कराइबी से स्ट्रांड आंतर इलेक्शन वास और बोले ओकर ऊपर क्रिटिक के बोले देश में ही हम लोग के इतना आदमी मरल है सब घर भी गिर गए हैं और जो ने मिनिस्टर है जो घर के बारे में जो है फेस्टिंग के जिसका नाम है जिम आंद्रेस बेल्ट्रान ओ जाई के स्ट्रांड पे रिलैक्स करे हैं एकर बारे में ओपोसी
oppositie, linkse oppositie, ik een motie van wantrouwen, regering me indien kritische, kritiek moment besloot vakantie te vieren, bolle etra kritiek op de minister van Volksgezondheid, huisvesting, bolle gele vakantie vieren kere, bolle bericht op ik schreef de minister dat hij niet op vakantie was, ik wil een paar uur doorbrengen met mijn vrouw en kinderen, die ik al enkele dagen niet had gezien, bolle Cairo Chuiga van oude lardgen ke bolle na dekkeri, bolle ohik mare bolle hem, bolle usab ke dekhat maarti, Shakira hi so marke, financiële steun toegezegd voor wederopbouw schoolje en waarschijnlijk bij hem. Amerika, filantroop Howard Buffalt, het zwaar getroffen departement Kokomeba, ja, Afro-Colombiaanse oorspronkelijke gemeenschap worden, Colombia met hun caprilon hoare, ook een gemeenschap met 2800 school beschadigd bij de choco met mensen op het eigen hega schoolien zijn ze verbouw geweken ik er baan mee Shakira aan de journalist wat jij ze je maar 1 miljoen dollar of 865.000 euro toegezegd, Colombiaanse zangeres ego he, bolle otra paisa toke hem debe, Colombiaanse zangeres zei dat ik 1 miljoen dollar was toegezegd voor de wederopbouw, het geld zou naar de verwachting worden gebruikt voor het repareren van de beschadigde scholen gebaren me naki ghar me dharie paiswa kono zangeres bhaiya miljonair he to 1 miljoen dega स्कूलिया के बनावे के बारे में हमारे जनता तो आप लोग को बताएं भैया एसएलएम के बारे में बड़ा क्रिटिक है एसएलएम के बारे में एसएलएम रिएक्ट करेगा और ब्रेक ओवर खाओस Samenstelling en functies van de RVC. Volgens de directie is dat ongewijzigd. SLM kebare me. Oh, SLM Surinaamse RVC via raad van commissaris. Doen bole he. Bole hega. Aanleiding voor de reactie. Bole hega. Online publicatie hega. Sora tarike. Doen ware tijd darise. Bole hega. Chaos raad van commissaris SLM me. Oh, bole hega. Naar de aanleiding. Daarvan bolle directie bolle gezamenlijk kennis te nemen van een bericht geven of bolle ook de functie binnen de raad zijn volgende maatschappij bolle kutjena verander bijl he to bari lamba chowda SLM ke baare mein likha gaya hai hamari janta to hum boli aapko kuch chota roop mein aapko bata de bhaiya 9 aadmi ke Suriname desh mein 9 verdachten veroordeel in saak vermissing van 2 mannen doi en mi laas bhail hai okar baare mein bhaiya 9 aadmi ke saban pakdi se बतावे गए इसे पड़का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्कूलन ते हैव कमांड ऑन डील नाम ऑन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बरेडिंग हैंडलिंग मेड बट्रेकिंग ऑफ द वेट फन वर्डोवेंड मिडलन uitvoeren van cocaïne of er poging daartoe dan wel hen aanwezig hebben van cocaïne te OM 50 jaar mangen hè aanbaris ke jal mangen hè to is sab ke bhaiya jal milal hè to jaise rahega iske bare mein aur aage batayenge bahut bahut lamba chauda iske bare mein bataye gaye hain jo aap log ko hum छोटा रूप में बताएंगे हम जाते हैं अफ्रीका के ओर भैया कोंगो में हम जा रहे हैं तुरुआ पे बहुत बड़ा बीमारी है चलल है एम्बोला के बारे में आप लोग जानो हैं कोंगो में है दो लक्ष ओइट इन हिट लैंड इतना आदमी न मरल रहा और देखता जनता अब की मरल है भैया और ये बात है रिपब्लिक कोंगो में
bolle 2325 en meer mensen zijn leven gekost. Ebola is dodelijk in de geschiedenis door Amerika, Afrikaanse land geheer. Congolese gezondheidsautoriteiten bolle 4945 en meer besmet bijl heer. En dodendag met inmiddels hoger radio 2018 of 2020 meer haar. OCMP 2299 mensen maar Allah op het aanwezig daarmee dodelijkse Congo ooit heeft meegemaakt abole abki aur jana maral hai dosto to iske baare mein bhi bahut lamba hai aap log ke hum mul mulle baat batate hai ki itra janta maral hai aur wo hai Congo mein hamare pyare pyare janta jo ek bimari hai Ebola सब बोले हैं हमारे जनता तो हम चलते हैं और आगे को अपना सूरीनाम के समाचार को लेकर भैया वोनन ऑपेट वाटर नीदरलैंड के बातचीत है इस नीच खुद को जानो यहाँ नीदरलैंड में चलियो तरीबा में मतलब पानी में बोट है वोन बोट है जहाँ आदमी रहे हैं तो कितना आदमी बोलो तो घर द्वार ना है बोट पे घर बनाई के और वहाँ रहे माँ दत इस नीच खुद को मेंशन वोन बोट इस दूरदर दान अन है हाँ तो जेके मालूम ना है तो अब हम बताओ थे आप

तो दोस्तों इसी सॉन्ग से आज के समाचार को हम और समाप्त करते हैं। एक लास्ट ब्रेक थे दोस्तों, फीरन देर तक बूतस हो गया है, फीरन देर तक बूतस मिलल है फ्राख्त वाहन के अप्स को तू कंट्रोलर करे ओ टूरिंग कार्ड के नीलांग के बातचीत हुए है रेक्स वांसस्थान सोमवार के फीरन देर तक को बोटू लिखे से फ्राख वाहन के और टूरिंग कार्ड के जो मेर वेड ब्रुख पे चलाए रहा। Het was de eerste dag dat motoragenten van de politie controleerden op het verbod op zwaar verkeer te handhaven. Ubrukipa zei, nam mag je zwaar verkeer jijke. En is op chalai raha, motoragenten, sabke pakli se bhaiya. Bole hega touring cars over de verzwakte brug reden. Als de chauffeur werd betrapt, leiden agenten en het voertuig van de weg af naar inspecteur van Rijkswaters. Staat. Dit schreven meteen een boete van 500 euro per jaar. Hoe direct liep de heer? To, hamare dosto, yahan tak tha hamara dis aur vidis ki samachar jo aap loon suna hai yahi aasha umeed se ki aapko hamara samachar zarur acha laga hoga Johnny number 1 hai hamara naam aap sabko hamara ram ram namaskar pyar bhari adab aur adab salam namaste हर एक काम के लिए हर एडवर्टेंसी के लिए

हरिओम, मैं खिदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार नमस्कार, और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्णादित्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार का शाम का साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूं यारो, सरनामी संगीत लेकर। यही आशा उम्मीद है कि आज का सिलेक्शन आप सभी को पसंद आएगा। तो जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी संडे शाम, और उसके बाद रात्रि पेश है मैं ढेर फील लाइस्टर प्लेजीर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस्तेमाल त्रिफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन एफएम चैनल पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फरमान रखते फ्रेडक तेरस कंतोर उर अब दुफोन टेलीफोन नंबर कंतोर 07-362-2077, और स्टूडियो का तार का नंबर है 07-362-2077। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो। एनी तो फरखेत है उनसे क्वालिटी इस आउटेट यू गारंटी, एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली फूड इज आउटेट लेकर दरबाई फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो हमसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे, जो खास करके हम लोगों का टीम लीडर वन एंड ओनली मास्टरो जॉनी नंबर वन जी ने आप श्रोताओं के पेश किया। इस तौर तरीके से भाई जॉनी जी सदियों से आप श्रोताओं को सेवा करते आ रहा है। यह आशा उम्मीद है कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तय दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से भाई जॉनी जी, और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक हैप्पी वीकेंड। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हो। विवाह संस्कार तो बीत चुका होगा ना, कंगन भी छूट चुका होगा। जो भी खुशी के दिन सभी आप मिलकर मना रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को और आप सभी के जितने मनोकामनाएं हैं, जितने नेक इरादे हैं ना, सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो, गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और परमपिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शैन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए। नित फरखेत है, जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना, थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में जरूर बातें शातें करते रहना। फनात बीतर काम आप कामयाब हो, तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां। और हो सकता है कि आप आज या कल कामयाब नहीं हुए किसी कारण, तो मोरखे स्वेरन ताख बंधु, चिंता के कोई बात नहीं है। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ ट्रोव
बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो हो सकता है कि कामयाबी जल्द से जल्द आपके कदमों को भी आकर चूम सकते हैं। देखो, मेहनत तो है दौलत का यारी। सो बी लव योर ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, नो इट अप ही फेबो तो लेट है Never give a brother na nga sisa. So, solo bilo bi ang blessings to all of you. And at you lang bedankt for het luisteren. Ab des me perwesh wet full team bi der se su swag tam fine vakansi. Blijf luisteren naar Found in the Stani Radio. You gonna like it and that mean it. Aur ho sakta hai ki aap des ko chhod ke videsh yatra pe ja rahe ho. अब शुभ नारमेर वारंत, तो आपको भी एक शुभ यात्रा, फैन फकांसी। तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को ओपन फकांसी एड्रेस इंटरनेट के लेयर द्वारा, ओपन लैपटॉप टैबलेट ऑफ स्मार्टफोन, तो आप भी सुनिए हम लोगों को। सो बेंट यू एंड ब्लेव टू फॉन अलस ऑफ द होस्ट फॉन यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दिस नेचुरली हमारे देन हाक सरकार ऑन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुरु। साथ के प्रोग्राम का शुरुआत संदेश में करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एंड फिल्म ललकार 1970 कंपोज बाय डॉक्टर कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या छा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं और सरा कहते ही रहेंगे कि हैव टू नॉट आउट इट लीव, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो। खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक सरनामी प्रोग्राम हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। पहला अध्याय में हमेशा एक तेरा बैठक गाना, कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स सेलेक्ट किया हूँ, और दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक। अपने लोग हैं, अपने देश के कलाकारें हैं यारो, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। बीच में कुछ ज्ञान के बातें है, शेर शायरी है, एंड लास्ट यूज फ्रॉम सीफ तो अह अलीन मार न्यू नंबर्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। रवि साहब हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत।

गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो साथियों आज का ये हसीन शाम का प्रोग्राम जो आप सभी के नाम है 23 अगस्त 2020 सोमवार मेरा का ये अति सुंदर प्रोग्राम आप श्रोताओं के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट है। मैं शुरुआत करने वाला हूँ हमारे सूरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार उस्ताद का उस्ताद बैठक गाना और सेमी क्लासिकल म्यूजिक का महामहा गुरु डॉन एंड ओल्डी माएस्ट्रो रॉबी उदित राम जी का ये सुपरहिट सॉन्ग ओ बेडर दी स्पेशल।

Dam शाबाश शाबाश शाबाश। महान गायक हमारे सुरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार उस्तादों का उस्ताद डोने डोली मैस्ट्रो रॉबी उदित्रम जी। पाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है साथियों। 15 मिनट गुजरने वाला है, 5 बजकर स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो तापमान तकरीबन 20 और 21 डिग्री सेल्सियस के दरमियान था। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, थोड़ा बहुत धूप भी निकला है तो मौसम भी हसीन है और जोर तोर से शरनामी संगीत भी चल रहा है। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार उस्तादों का उस्ताद माएस्ट्रो क्रिस राम खेलावन जी का बिल्कुल नया सॉन्ग न्यू न्यू न्यू पायलिया।

इंटरनेशनल कलाकार हमारे सुरिनाम देश का उस्ताद का उस्ताद मैस्ट्रो क्रिश राम खेलावन जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को साथियों, एक और जबरदस्त महान गायक हमारे हॉलैंडीज़ देनाउ शेरकार लायन ऑफ बाइट गाना उस्ताद का उस्ताद मास्टरो देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी को लाते हैं प्रोग्राम में, और उनका ये बिल्कुल मजेदार नए सॉन्ग जो इस वक्त काफी हलचल मचा रहा है जहां जहां पर हिंदुस्तानियों बसा हुआ है, दियास्पोरा हमारे महान फनकार जिस पे हमें नाज है, गर्व है और होना भी चाहिए, द वन एंड ओनली हमार मशीनिया सुनाने वाला है आप सभी को द लायन ऑफ बैठ गाना।

Shabbos, Shabbos, the king of Beta Ghana from Holland, the one and only Maestro Sandeep Badluji ke beautiful awaaz mein iti sundar bayan aap srotaone sune. Ek minute guzar chuka hai saathiyo, 5:30 बजकर और आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर हमारे दैन हाक्षर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर 24 आवर्स एट योर सर्विस. अगला बयान जबरदस्त गाने वाली हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का मशहूर गाने वाली एंड बैठ गाना क्वीन फ्रॉम हॉलैंड बिजानवती चैतू जी को लाते है प्रोग्राम में और वो सुनाती है ये अति सुंदर बयान दर्दियों न जानी.

Ja, wat hey, Holland met Trinidad. Raymond Ram Nainor, Shivam Raja Ramka, super dead song, absolutely, bhi sun rahe the. New. 15 मिनट रह गया है 6 बजने में साथियों, और आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर रविवार का शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 23 अगस्त हो गया है यारो, सो हाथ हाथ हैं, और देखा जाए किंतु इन दिन हाँ है नोक स्टेज वैकेंसी स्कूल वैकेंसी एंड या इट गाट ओके ओवर एन वीक है, dan moeten ze weer op school. Agla bayan naujwan kalakar hamare Hollandis ka jo kuch dino hue hai Suriname desh se yahan aaya, aur kuch dino mein hum logo ko itne jabar jabar gaane se hum logo ko khidmat kiya, aur saath hi saath kaafi dino mein itna popular ho gaya hai. अभी लोग इसे बुलाते हैं द किंग ऑफ बैठक गाना रॉक, बजाते हैं ये लोग, तो ये उनका ये बिल्कुल नया सॉन्ग है मैस्ट्रो सुजल उमराव जी का बालापन से, मिलके सुनते हैं, जबरदस्त सॉन्ग है, एंजॉय द म्यूजिक, सरनामी संगीत स्पेशल हमारे सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

जबरदस्त सॉन्ग और जबरदस्त कलाकार हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का नौजवान कलाकार मैस्ट्रो सुजल उमराव जी का बिल्कुल नया सॉन्ग और ये भी खास करके फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश हॉलैंड देश का अग्रियार 70-80-90 बैठक गाना का जबरदस्त उस्ताद इन द ग्रेट मनराजी लक्ष्मण जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए ये ऐसे मौसम के बारे

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 23 अगस्त 2020 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और ये भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनातुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सुसलो बिलो बियॉन्ड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू अनातुलक विदाउट फॉर हेथ लेस्टरन। एक मिनट गुजरने वाला है 6:00 तो जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना उपमान पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को होने देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेल फनमान रख तो फ्रेड रख तेनस कंतोर उर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंतोर 07 365 22 47 और स्टूडियो का तार का नंबर है 07 362 20 77। जो भी रेडियो का काम होना देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। यूवेन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो, रेक्लाम बनाते रहना और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है। और इसके लिए आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं को हमारे फूल टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद एना तिलक बदम। बैंक नो खेलित फन फा हूँ हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एंड वी हैव ओक उन्स एक कराओक टीम फन रेडियो फा हूँ वार हेल फेल ओमरूपर्स ओक लाइफ अनंत सिंह सेन। Dus volg onze social media en onze omroepers, dan hoort u of ziet u zeer zeker heel binnenkort waar wij live voor u gaan zingen. तो आप यहाँ कर इस छोटा सा मोटा सा जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बन चुका है और बनते जा रहे हैं उसमें आकर आप भी शामिल हो जाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें फमान डॉक्टर फ्रेड रखते कंतूर उर ओप दिट नंबर 07 365 22 47। Dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider, de one and only maestro Johnny number one. आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। वर के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का और आज का ओपनिंग सिलेक्शन लेकर आ रहे हैं साथियों। हमारे सुरीनाम देश का जबरदस्त गायक द वन एंड ओनली मैस्ट्रो फारिस बरसाती फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मेसी द स्टार्स। मिलके सुनते हैं बॉलीवुड ब्रांड

A beautiful song, gorgeous song from the music Farmacy the Stars, Organevalata, lead singer, the great Faris Barsati ji. स्प्रिट गुजर चुका है, छह बजकर साथी और आप चुन है हैप्पी का हैप्पी हैप्पी स्टेशन फ्रॉम दी हेग से ती द वन एंड ओनली फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर, और जोर जोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। अगला बयान एक जबरदस्त गायक जो कुछ दिन काफी दिन हुए हैं हम लोगों को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनका नाम इतना जबरदस्त है कि अभी तक हमारे सूरीनाम देश में रोजाना रेडियो पर ये महान फनकार के गाने लोग चलाते रहते हैं, और हम लोगों को भी अगर मिल जाए फुर्सत तो कभी लोग भी यहाँ ऑनलाइन देश में चला देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस्तादों का उस्ताद माएस्ट्रो नदीम खान जी के ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, रीअरेंजमेंट बाय माएस्ट्रो ज्वाला।

इस गायक हमारे हॉरेंडीज का आइडिया 70, 80, 90 खबरें इन पाकिस्तान और कितने गाने हम लोगों के लिए गागा करिए छोड़कर और बड़े ही कम उम्र में भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनके यादें अभी तक हम लोग ताजे रख रहे हैं उनके गानों के जरिए। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉरेंडीज का मैस्ट्रो संजय जोधा जी को लाते हैं प्रोग्राम में, उनका साथ दे रहा है मशहूर गायक रणधीर बद्री जी, और ये सब मिलके सुनाते हैं आप सभी को चटनी मैशअप द्री।

क्या बात है, शाबाश शाबाश। म्यूजिक बाय सेलेक्टा, बीट्स चटनी मैशअप द्री बाय संजय जोरा, रणधीर बद्री, सत्विका एंड दी वॉक। नॉमिनेटेड है क्या है साथियों, 6:30 बजने में, और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर जोर तोर से सरनामी संगीत। आप सुन रहे हैं दूसरा भाग इंडियन पॉप म्यूजिक फ्रॉम सूरीनाम एंड हॉलैंड। अगला बयान एक और मशहूर गाने वाली हमारे हॉलैंडिस का, द मेलोडी क्वीन फ्रॉम हॉलैंड, द वन एंड द ओनली मधुलाल बहादुर सिंह जी को लाते हैं प्रोग्राम में, और वो सुनाते हैं आप सभी को एक एवर ग्रीन सॉन्ग ऑफ द फिल्म सजा 1951। लता जी का गाया हुआ है अति सुंदर बयान, कंपोज बाय एस डी बर्मन, अल्फाज़े है साहिर लुधियानवी जी का, मदद के रोड्स है बखलेट दौर हित बरुंड ऑर्केस्ट एट नीदरलैंड सुइट हॉलैंड्स सिम्फोनी ऑर्केस्ट के साथ आप ये अति सुंदर बयान एवरग्रीन सॉन्ग सुनिए, तुम न जाने किस जहां में, मधु ऑप्शन बेस्ट।

Yes, natuurlijk, natuurlijk. Een applausje waard voor onze beroemde zangeres uit Nederland, The Nightingale from Holland, the one and only Madhu Lal Bahadur Singh. En op dit nummer werd zij begeleid door het Zuid-Hollandse Philharmonisch Orkest. Ja, hey साथियों, 6:30 में और आप चुन हैं आप ही का मनचाहा रेडियो स्टेशन पर धनहंसर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 23 अगस्त 2026 का यह हसीन रात्रि का प्रोग्राम. अब आप लोग जरा दिल थाम लीजिए क्योंकि अब मैं आप सभी के खिदमत में पेश करने वाला हूं आप सभी का यारो का यार जिगरी दोस्त और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का जबरदस्त अनाउंसर साथ ही डॉन एंड ओनली अनिल सरजू जी को लाते हैं प्रोग्राम में. श्री नाम देश होने देश का जबरदस्त गायक, उनका बिल्कुल नया सॉन्ग कुछ दिन हुए निकाला हुआ है और देखा जाए महान संगीतकार ज्वाला का संगीत है. लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी का गाया हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग अखियों के नूर बाय मैस्त्रो अनिल सरजू. क्या बात है भाई, ब्लेसिंग्स है सोसलो बिल अंत ब्लेसिंग्स नतीलक यारों का यार और जिगरी दोस्त भैया अनिल सरजू.

Beautiful song, wonderful song, शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश हॉलैंड देश का और हम लोगों का अपना अनोखा साथी फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का जबरदस्त अनाउंसर और गायक द वन एंड ओनली मैस्ट्रो अनिल सरजू जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं सुन रहे थे। म्यूजिक अरेंज बाय मैस्ट्रो ज्वाला। 2 मिनट गुजर चुका है साथियों, 6:30 बजकर तो वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर्स के।

ऐसे किया है यारों कि एक बार प्यार वाली फीलिंग्स आ जाए, अगर एक बार प्यार वाली फीलिंग्स आ जाए तो सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहना मुश्किल।

तुम्हें और कितना करीब लाऊं मैं, इससे ज्यादा तुम्हें और कितना करीब लाऊं मैं कि तुम्हें दिल में रख कर भी मेरा दिल नहीं भरे।

जिंदगी का सफर है, कभी खुशी है और कभी गम है। हर पल को जी ले बंधु, हर पल को जी ले, क्योंकि वक्त रुकता नहीं है मेरे प्यारे।

शख्स पर चाहत खत्म कर दी। हमने तो एक शख्स पर चाहत खत्म कर दी, अब मोहब्बत किसे कहते हैं हमें मालूम नहीं। यह भी होता है यारो, बोले मोहब्बत ही खत्म कर दी। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हम लोगों का हॉलैंड देश और सूरीनाम देश का uit de jaren 70, 80, 90. Maestro Michel Lechman die kolate hij programme en we sonate hij Mastana Orchestra ke full sa jor sangeet per Kali Nagaria.

Eerste ga ik uit de jaren 70, 80, 90 begonnen bij Pandero, daarna bij Mustana, ook heel veel shows gegeven. De One and Only Maestro, Michel Lechman, die heb beautiful avans mee, die zijn er bij aan, absoluut al, abysun rete. Hindustani Radio pe aap chun hai saathiyo ravivar ka ratri ka program baithak gana to aap sun chuke ab aap sun rahe hai sarnami Indian pop music agla bayan jabardast gaane wali from Holland Rotterdam the chutney queen aur kya kya क्वीन नहीं है ये महान गाने वाली द ग्रेट अश्नी माता दिन जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को रुला के गया सपना मेरा

बोला कि गया सपना मेरा, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और गाने वाली थी हमारे हॉट इंडीज का मशहूर गाने वाली द ग्रेट अश्नी मतादिन, और संगीत देने वाला था मैस्त्रो ज्वाला। 15 मिनट रह गया है साथियों 7 बजने में। अगला बयान जबरदस्त सॉन्ग है, खौ औ एड यार तख्त, और लाते है प्रोग्राम में मशहूर गाने वाला हमारे हॉलैंड देश का, सूरीनाम देश का, एड यार तख्त 90 और 2000 मैस्रो शहीद वाहिद हुसैन जी का ये जबरदस्त सॉन्ग द इंडियन डायमंड्स स्विंग टाइम 1967 का ये ब्यूटीफुल हिट सॉन्ग है, जिससे आप लोग जरूर कह सकते हैं हिर में मैं दिन में मेरे से एक डोर गब्रोक बाय इंडियन डायमंड्स।

दुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सो सो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू अनतिलक बतंत फॉर हेट लाइस्टरन। दो मिनट गुजर चुका है 7:00 और आप चुन है आप ही का हैप्पी स्टेशन पर देन हाशर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अब से लेकर 8:00 रात्रि तक ओनली नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। जो भी रेडियो का काम होना देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाई से इश्तिहारे जरूरी खबरें देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो सभी जानकारी अपनो सीमत तक ड्रीफेंस तक 2027 फेर तक कांतोर और स्टूडियो कतार का नंबर है 2027 तक। जो भी रेडियो का काम होना देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बैठे नो खलित फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बीती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। We hebben ook onze eigen karaoke team waar heel veel zangers en zangeressen live zingen. Karaoke en natuurlijk bent u van harte welkom op onze optredens. Volg onze social media en omroepers, dan hoort u of ziet u heel snel waar wij binnenkort voor u live gaan zingen. En daar bent u dan van harte welkom. तो आप भी जल्द से जल्द इस छोटा सा मोटा सा जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बनते जा रहा है और जो काफी बन चुका है आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने सीमित डिफेंस 2027 फेर तक और ऑटोमेटिक डोर फॉरबंडन आर ऑन्स टीम लीडर द वन एंड ओनली माय एस्ट्रो जॉनी नंबर वन। आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना और इसके लिए हमारे फूल टीम के तरफ से आप सभी को तह दिल से कोटि कोटि धन्यवाद क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम के तरफ और एक जबरदस्त सॉन्ग रख चुका हूँ प्लेयर में, काफी बार सुना चुका हूँ आप सभी के, लेकिन लोगों के गुजारिश पर एक बार फिर ये ब्यूटीफुल सुपर हिट सॉन्ग्स सॉन्ग दोर मलकाए हुस्न मलकाए संगीत द ग्रेट मधुबंती बख्शी साथ उसकी दे रही है दिव्या कुमार और सचिन जिगर म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर सचिन जिगर के साथ। और अल्फाज है क्या बात है अल्फाजे पे जरूर ध्यान देना द ग्रेट लेखक इस जमाने का अमिताभ भट्टाचार्य जी आज की रात अनुमर ऑम आउटेट फ्रॉम द होडन।

Ja, wat een machtig nummer hoor, Aantje Kieraad, in de film Street 2. Rajkumar Rao Aure Tamanna Bhatia ka beautiful superhit movie. देखा जाए महान संगीतकार सचिन जिगर के सांच पर अमिताभ भट्टाचार्य के अल्फाजे और गला, क्या गला है, मधुबंती बख्शी मलकाए हुस्न मलकाए संगीत साथ दे रहे थे दिव्या कुमार और सचिन जिगर। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप जो है साथियों, कुछ नगमे आज रात के लिए मैं चुना हूँ अरफान देस खौ औ, और ये भी सुनने वाले के रिक्वेस्ट पर। एड फिल्म नकाब अन खौ औ जावेद अली जी के ब्यूटीफुल आवाज में समीर का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, कंपोज एंड अरेंज बाय द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर मैस्ट्रो प्रीतम चक्रवर्ती। जावेद अली ऑप्शन बेस्ट इंफान सिंह अलर बेकेंस्ट एंड बरुमस्ट नंबर एक दिन तेरी राहों में।

is the song's name. और ये थी सुंदर बयान को गया है इस जमाने का मशहूर गाने वाले द ग्रेट विशाल मिश्रा, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर एंड कंपोजर। एक और अति सुंदर बयान मैंने रख चुका हूँ प्लेयर में आप सभी को सुनाने के लिए, और इस बार लाते हैं इस जमाने का एक और जबरदस्त गायक द ग्रेट अंकित तिवारी जी को। महान संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर अंकित तिवारी का ये गाया हुआ और कंपोज किया हुआ ये अति सुंदर बयान खशरीफ दौर अभिन्द्र कुमार उपाधव फ्रॉम द मूवी रॉय तू है क्या।

है कि नहीं, एक जबरदस्त मूवी रॉय। और इस फिल्म में रणबीर कपूर और जैकलिन फर्नांडिस ने काम किए हैं। महान गायक अंकित तिवारी जी के आवाज, उन्हीं का संगीत और लेखक है अभिंद्र कुमार उपाध्याय। 4 मिनट बाकी है 7:30 बजने में साथियों, वह भी धीरे धीरे करीब आ रहा है और भाग भी रहा है। लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान, एड फिल्म जब तक है जान, महान गाने वाली हमारे पंजाब की द मैरिड क्वीन फ्रॉम पंजाब हर्षदीप कौर को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाती है आप सभी को। गाने का बोल है हीर, महान संगीतकार, इनका बैनाम तो दिया गया है इस वक्त द ब्लैक अमाडेस फ्रॉम एशिया। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए महान संगीतकार ए आर रहमान जी का ये बैनाम है, निकनेम है, उन्हीं का संगीत है ए आर रहमान जी का। और महान लेखक अलर तेड द ग्रेट गुलजार जी के अल्फाजे, उन्हीं का लिखा हुआ ये फिल्म है। तो मिलकर सुनते हैं फिल्म जब तक है जान, ये अति सुंदर दिल को छू लेने वाला बयान, हीर हर्षदीप कौर।

दिल को झकझोर के धर देते हैं ऐसे ऐसे नगमे, अति सुंदर बयान है। और ये भी मशहूर गाने वाली फ्रॉम पंजाब, द नाइटिंगेल फ्रॉम पंजाब, हर्षदीप कौर जी के आवाज में। और क्या बात है, द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान का कंपोज किया हुआ है अति सुंदर बयान। खसखरीफ और क्या बात है, द ग्रेट स्क्राइवर अलर टाइड फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, मैस्ट्रो गुलजार। तो साथियों, 3 मिनट गुजर चुका है, 7:30 बजकर कुछ आखिरी शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। कुछ दो लाइन शेर्स है साथियों, ये तो खूबी है दो लाइन शेर शायरी का कि इतने कम लफ्जों में पूरी कहानियां लोग सुना देते हैं। चौकनौर अर्ज किया है साथियों, कभी पिघलेंगे पत्थर भी मोहब्बत की तपस्या पाकर। क्या बात है, कभी पिघलेंगे पत्थर भी मोहब्बत की तपस्या पाकर, बस यही सोचकर हम पत्थर से दिल लगा बैठे। आज फिर उतरा है दिल पे काफिला गम का, आज फिर उतरा है दिल पे काफिला गम का, खूब रोएंगे, रात तो अपनी है ना। सुन मेरे दिल की जुबां कहती है क्या तुझसे ऐ जाने जा, सुन मेरे दिल की जुबां क्या कहती है तुझसे ऐ मेरी जाने जा, बैठी रहो सुनती रहो सीने पे सर रख कर के ऐ जाने जा। तजुर्बे ने सिखाया है मुझे एक नई बात, तजुर्बे ने सिखाया है मुझे एक नई बात, पुराना दर्द भुलाना है तो नया दर्द को पाल लो। फिर नहीं बचते वो दिल जो एक बार उजड़ जाता है, कभी कभी बस जाता है। फिर नहीं बचते वो दिल जो एक बार उजड़ जाता है, कबर जितनी भी संवारो, कबर जितनी भी जमारो, कोई जिंदा नहीं होता यारो। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, मेरा दर्द मेरा ही दर्द था, मेरा दर्द मेरा ही दर्द था, बड़ा दर्द हुआ ये जानकर। ये था कुछ आखिरी शेर्स। अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं, एक और जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, इस जमाने का मेरे ख्याल से द मैन विद मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस, द मैन विद गोल्डन वॉइस फ्रॉम इंडिया बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का इस जमाने का, दैट इज माय मीनिंग। और मैस्त्रो पापों जी को लाते हैं प्रोग्राम में, महान संगीतकार सैफ अली जी के साथ है और अल्फाज है आयुष जी का, मिल के सुनते हैं ये अति सुंदर बयान। क्या बात है पापों, द LSD म्यूजिक।

सुंदर बयान और ये भी सैफ अली के साज और संगीत पर आयुषी यारा का ये अति सुंदर लिखा हुआ बयान। खसोंग दौर इस जमाने का जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द मैन विद गोल्डन वॉइस माएस्ट्रो पापों। अति सुंदर बयान, जरा दिल को थाम लीजिए एक बार फिर। अमदाद से ओक सो मोए कान सिंग एंड सो या से स्नित अलेन कनाप सुपर कनाप और मधुबंती बाक्षी जी को लाते हैं प्रोग्राम में एक बार फिर। एड सुपर एट मूवी धूरंधर का ये अति सुंदर बयान एंड इट इज लाइक ऑन टू वेट दैट से आल रिक्टिंग 819 miljoen views gaat hoor, dat is heel veel worldwide. Aur dikha jaye tisunder bayan ko sajaya hai Shashwat Sachdev ji ne aur saath de rahi hai Madhuvanti ji ka mashhoor gaane wali aur lyrics lekhak Jasmine Santlas jo ek bahut hi behtareen gaane wali bhi hai। शश्वत सचदेव ये दोनों मिलके ये तीज सुंदर बयान को लिखे हैं, क्या बात है। शरारत और मिलके थोड़ा शरारत करें ना, ग्रेट सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Beautiful song uit de film Durandar. Monsieur Ghanewali is Zamanika. Malkai Husne Malkai Sangeet the Great Madhubanti Bakshi. Kya baat hai, ek se ek ati sundar nene secret songs mein aaj ke ratri ke liye select kiya hoon. Ye yash ummeed hai ki aap sabhi ko aaj ka selection bhi zarur pasand aate hoge. Agla bayan ek aur ati sundar jabardast song hai aur film Durandar aur कुछ लोग ने मिलके गाए हैं ये अति सुंदर बयान को देखा जाए रेबले शाश्वत सच देव और कुछ आशा जी और आर डी बर्मन जी के आवाजें मिक्स किया गया है तो मिलके सुनते हैं रन डाउन द सिटी फ्रॉम द मूवी धुरंधर.

0: Rondon de City, Monica, oh my darling, remix by Dikha Jai, Jyoti Deshpande, or Dikha Jai from the movie Dhurandhar. Kuch gaane wale hain Revel Saraswati Sachdev, aur awaze remix kiya gaya Adi Berman aur Aisha Bhosle ji ka. धीरे धीरे करीब आ रहा है साथियों, तो आज का मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे एड फिल्म स्त्री ट्वे. गाने वाले पवन सिंह, सिमरन चौधरी, दिव्या कुमार और सचिन जिगर है. अल्फाज़े अमिताभ भट्ट चढ़िया जी का, कंपोज एंड अरेंज बाय माएस्ट्रो सचिन जिगर. आई नहीं
1: झूठी खाई थी. सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप फ्रॉम सारेगामा.
2: वो नहीं आने वाले.

क्या बात है, अति सुंदर बयान श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया, और ये भी फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के

साथियों, यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ साथियों कि जिस तावत्रिक समय कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। हमारे बात आप सभी को सेवा करने वाला है बड़का भैया डवाने डवली माएस्ट्रो चंद्रसेन गंगा जी। आप सभी को कुछ पुराने पुराने नगमे से सेवा करने वाला है और उसके बाद एक से एक अनाउंसर साथी आप सभी को खिदमत करने वाले हैं। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना और मुझे आपसे भी इजाजत दें। हमारे बाद आप विज्ञापन सुनेंगे और उसके बाद बड़का भैया श्री मान गंगा जी आप सभी को आगे प्रोग्राम लेकर बढ़ेंगे। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि में मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ 8 बजे रात्रि को और कुछ फरमाई से लेके। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो गुनगुना देता हूँ और ये भी महान फनकार डगड़ेत दादा हेमंत कुमार की याद में।

Bye bye, shy shy, love you all. The bottom of my heart. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. Sosolobilobion, blessings to all of you. En agar goederet nechaha to anewale budwar aardwije. Ratri, me mij aap sabhi ke liye. Hazir ho jaunga studio me avans ke zariye. Aur kuch farmaise hai, ek bekende collega hum log ke faryari hai. तो वो चाहता है कि मैं ये प्रोग्राम्स के लिए बनाऊं फरमाइश है कि इस आलमाल खातिरात उस दाग हो रहे हैं तो साथियों जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना बाय बाय श्वाय श्वाय एंड टॉट वुंस्टाग आवंट 8 uur

जीते हो किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। जो बीमारे, लाचारे, तंदुरुस्ती, दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी हो या कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है, इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप जहाँ भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, आप सबको हृदय से स्वागत किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका सेवक गंगा, और कुछ घड़ी तक हम आपका साथ रहेंगे। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। जो लोग चुन किए मीटर पर, आप सबका हृदय से स्वागत है। चलिए, आप सबका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई शुरू मेरा वतन जापान लता जी आपको सुनाए हैं और कार्यक्रम में हमने चलाए हैं। आप सबका स्वागत है जो लोग चून की मीटर पर। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत इस तरह से, बस ध्यान दे के सुनिए।

कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मैं थी मुकेश, द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस। आपको सुनाइए ये शानदार गीत, जबकि आप भी सुन रहे हैं और मैं भी चला रहा हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबका स्वागत करते हुए तो सुनिए, मैं आपको ये सुना रहा हूँ इस तरह से। लता जी है, जी हाँ लता जी है, फिक्टोरिया 2003।

थोड़ा सा ठहरो लता जी की आवाज़ में पेश किया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर साथ साथ चलने के वादा की जाए तो इस तरह से।

न थो छोड़ेंगे दामन तुम्हारा वहाँ तक। ये शानदार गीत चला हमने पेश की रवि साहब आशा जी की आवाज़ में, और उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ख्याल है, प्रेम प्यार मोहब्बत में तो लोग बहुत वादे करते हैं लेकिन कभी निपता है कभी नहीं। लेकिन चलिए सुनते हैं कि एवरग्रीन किशोर कुमार क्या कह रहा है इसके बारे में।

शायद होगा जो, शायद कोई होगा जो ये फिल्म नहीं देखे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि फैफ नहीं हिंदू प्रसेंट लोग ये फिल्म अवश्य देखे होंगे। गीत में तो आपने नाम सुने, जूली, जूली फिल्म का नाम है, राजेश रोशन के साज पर फिल्म जूली में से निकाले हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चलिए कार्यक्रम बढ़ाते हुए, तो क्या ख्याल है अगर आपको ये गीत सुनाऊं, इसे सुनिए, क्योंकि ये गीत बहुत नहीं चलता है और ये गायक का गीत बहुत भी नहीं चलता है, लेकिन आप तो आज तो हम आपको अवश्य सुनाएंगे, बस अंदाज़ा लगाइए आवाज़ किसकी है।

जी हाँ, आशा जी, आशा जी के साथ कौन था आप अंदाज़ा लगाए होंगे, सुबीर सेन। जी हाँ, सुबीर सेन की आवाज़ में ये गीत था। आशा जी के साथ एस महेंद्र के साज पर हमने पेश की फौन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है क्या ख्याल है, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

मैथु मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाई ये शानदार गीत, और हमने पेश की बस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम

बस शारदा जी, बहुत देर ना समुचिए वरना पासा पलट ना जाए कहीं। बहरहाल फिर भी आपको सुनाएं शारदा जी के साथ ये शानदार गीत हम पेश किए। तो अगला गीत, ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने।

फिल्म चितचोर में से निकाले हैं येसुदास जी, येसुदास जी आपको सुनाए हैं ये कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है रफ़ी साहेब सुमन कल्याणपुर जी। हाँ, रफ़ी साहेब सुमन कल्याणपुर, बस क्या ख्याल है, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म चांद और सूरज, चांद और सूरज में से सलील चौधरी के साज पर।

रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर, ये दोनों मिलके आपको ये शानदार द्वैत सुनाए हैं। चलिए घड़ी पर देखूँ जी, हाँ अभी थोड़ी समय बाकी है, तो हम पेश करते हैं ये गीत। ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, अगर हाल ही में सुने होंगे तो एक बार सुन लीजिएगा। एवरग्रीन किशोर कुमार।

0: तो आपने तो सुन ही चुके हैं कि प्यार की कभी कोई हार नहीं होती है। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये कार्यक्रम में।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimumsummerfestival.nl.
1: चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, आओ इस तरह से लीजिए।

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का आम
1: ये वाक्य आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने हैं। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

हाँ जी रफ़ी साहब और लता जी, फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे, ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है। तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें एक प्यार करते हैं करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश कर रहे हैं इस तरह से रफी साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्द दिल दर्द जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और माइतू मुकेश द हार्टथ्रॉब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, लेकिन 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। किशोर कुमार।

फन फन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे आमदनी के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। आमदनी के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है, क्या प्यार में ये भी होता है कि जिस समय आप प्यार करते हो तो आपकी सांसें रुक जाती हैं? अच्छा, हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा। निर्लय आप ही लीजिए और चलिए सोनू निगम और अलका याग्निक जी ये दोनों मिलके आपको ये बयां सुनाते हैं कि सांस रुक जाती है या नहीं।

कि तुम मेरी बाहों में हो। अलका याग्निक जी और सोनू निगम जी मिलके आपको ये शानदार द्वैत सुनाए नदीम श्रवण के साज पर, और पेश हुआ फन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म जीत में से निकाल कर हमने चलाए। उम्मीद है यह लवली गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। और ये सांस लेने का सिलसिला की बात हमने की ना, अब इसकी निर्णय आप ही लीजिए कि कैसा हुआ होगा, कैसा होना चाहिए था। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलिए फिल्म क्रिमिनल की ओर जाते हैं। फिल्म क्रिमिनल तो आपने अवश्य देखे होंगे। जी हाँ, फिल्म क्रिमिनल में से निकाल रहे हैं और ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

फिल्म क्रिमिनल में से निकाले हैं सोनू निगम नहीं, कुमार सानू का ये द्वैत अलका जी के साथ हम आपको सुनाए हैं। चलिए एक गीत हमने और प्लानिंग में रखे हैं और वो गीत है कि प्रेम प्यार मोहब्बत में कितनी हसरत होती, कितनी खुशी होती है, कितनी खुशियाँ लोगों को मिलता है, कहाँ तक सच है कहाँ लेके झूठ है, ये दोनों साहिबान आपको मिल के सुनाएंगे, यानी कि कुमार सानू और साधना सरगम, ये दोनों इसके बारे में आपको सुनाएंगे। बस सुनिए।

साधना सरगम के साथ। जी हाँ, साधना सरगम के साथ कुमार सानू आपको सुनाए नदीम श्रवण की लिखी हुई गीत, नहीं बजाए हुए गीत, समीर की लिखी हुई गीत। जी समीर की लिखी हुई गीत और नदीम श्रवण ने बजाए हैं। चलिए कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं। आप चाहे जहाँ भी होंगे धरती पर, प्रेम प्यार मोहब्बत तो हमेशा होता है, चाहे धरती पर जहाँ भी होंगे। तो यही कहानी अलका याग्निक जी और कुमार सानू मिलके दोनों आपको सुना रहे हैं। बस ध्यान से सुनिए।

हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। ये प्यार मोहब्बत की दास्तां आपने सुने हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। लेकिन किशोर कुमार जी ये कह रहा है, आपने तो दिल के बातें की है, लेकिन मैं दिल से तारीफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही तरफ का है। किशोर कुमार जी आपको सुना रहे हैं, सुना बस इस तरह से आ रहा है एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी, आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए इस तरह से। गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा यहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन किशोर कुमार जी भी तारीफ़ करने से चूकता नहीं है। तारीफ़ ही तारीफ़ लीजिए एवरग्रीन किशोर कुमार, एक बार फिर से तारीफ़ की तारीफ़, तारीफ़ ही तारीफ़।

बस आपने किशोर कुमार जी की तारीफ सुनी ना, फिल्म जंगल में मंगल में से निकाल कर, हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, फिल्म का नाम है जंगल में मंगल, उसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। प्रेम प्यार मोहब्बत में कसमें भी खाते हैं, जी हाँ, पता नहीं आप कभी कसम खाए होंगे या नहीं, बस इसका निर्णय आप ही लीजिए या बसलेस आप ही कीजिए, मतलब लीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ ये कसम खाने की सिलसिला।

क्या बात है, अलका जी और उदित नारायण मिलके ये द्वैत आपको सुनाए हैं, ये कस्में खाने की बातचीत। तो मुकेश जी कह रहा है कि उन्हें तो थोड़ा डर लग रहा है, प्रेम प्यार मोहब्बत में मुकेश थोड़ा चंट है, तो वो कह रहा है और क्या कह रहा है, चलिए हम आपको सुनाते हैं।

मुझे रात दिन ये ख्याल है, फिल्म उमर कैद में से निकाले हैं निकतिन इन सस्क का ये गीत इकबाल कुरैशी के साज पर हमने पेश किए ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, लेकिन मैं तो मुकेश जी के बाद हम ये गीत और आपको सुनाएंगे। जी हाँ, विज्ञापन से पहले चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

बहुत हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और वो बड़ी अरमान से, बड़ी अरमान से लिखा है बलम तेरी कसम। फिल्म मल्हार का ये गाना नेखतिन एन फैफ्तख का, जिसको जिस फिल्म में लता जी और मुकेश जी गाया है। और ये गाना तो, और ये गाना जो अब हम चलाए जाते हैं भैया, ये गाना जो है बहुत पुराना गाना है, गीता दत्त शैलेंद्र का, और इसमें हेमंत कुमार ने भी इस गाना को गाया है। दादा हेमंत कुमार ने मुझको तुम जो मिले, तब वो क्या हुआ जहां भी मिल गए।

मिली जहां मिल गई, दादा हेमंत कुमार का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है मालहा सिन्हा ने गीता दत्त के साथ दोस्तों। और ये गाना है तुम तो प्यार हो सजना, और ये फिल्म है भाई शहरा का फिल्म है, और शहरा का फिल्म में क्या कहते आओ मिलके।

तुम तो प्यार हो सजनी। और लता और मोहम्मद रफी जी, ये गाना आपको सुनाए, फिल्म शहरा का। ये फिल्म निखती इंद्रिय से अस्तक का, और ये नया गाना जो नहीं है पुराना गाना, निखती निखने से अस्तक का है। और मुकेश जी इस गाना को गाया है फिल्म विश्वास का ये गाना। और मिल के सुना जाए हमारे ये प्यारे प्यारे दोस्तों।

और दोस्तों चांद की दीवार न तोड़ो और प्यार भरा दिल तोड़ दिया फिल्म विश्वास का ये गाना निहत होंद निहन सस्तक का। और दोस्तों ये भी एक पुराना गाना हम चलाते हैं फिल्म विजयंती माला राजेंद्र कुमार का ये फिल्म है साथी का ये गाना और ये हम यहाँ से रेडियो फाहुन के माध्यम से चलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों और आओ मिलकर सुना जाए कि ये क्या गाते हैं।

मेरा प्यार भी तू है और ये बहार भी तू है, फिल्म साथी का ये गाना हमने निकाला है और जिसमें काम किया है विजयंती माला और राजेंद्र ने दोस्तों। और ये गाना है मोहम्मद रफी जी, परमाशी मोहम्मद रफी जी इस गाना को गाया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ में। और ये गाना है फिल्म दोस्ती का और दोस्ती के गाना उसने सुनना चाहते हैं तो यहां से हम चला देते हैं और यहां से मेरे दोस्ती।

और दोस्तों मेरी दोस्ती और मेरा प्यार, और इस गाना को मांग किया है और वो है सुरेश हरि प्रसाद भैया है नकन, बर्तन अर्तन धोई के भैया एकदम तैयार है। और बोले जॉनी ये गाना है फिल्म नूर जहां का, ये गाना है आओ मिलकर और हम सब और सुना जाए।

कर बदल जाने वाली फिल्म। महबूब ने हंटिंग ट्वीन सिस्टर नूर जहां इस गाना को गाया है दोस्तों, और ये एक बहुत पुराना गाना है जो आप लोग को हमने सुना दिया है। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, मन भूल जाना रेडियो फाहून पूरा विश्व में आप सुन सकते हैं दोस्तों, और आप जरूर डाउनलोड कीजिए वेब जो है हमारा रेडियो फाहून का, और देहा बी प्लस पे हम पूरा हॉलैंड में सुनाई देता है, और अपनी गाड़ी में एतर पे आम 15.66 तक पे हमारा प्रोग्राम आप लोग सुन सकते हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और जितना भी दोस्तों है, परिवार है, दुकानदारों है, बदरइफो है, आप सबको बता देना कि रिक्लाम यहां पर रेडियो फाहून में बहुत सस्त में मिल जाती है हमारे दोस्तों। यहाँ से कुछ मिली जुली पुरानी और नए गाने से हम आप लोग को सेवा करते हैं, सेवा करेंगे दोस्तों, और आपको हम यहाँ से खुश करेंगे, और आप जहाँ भी हो हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहो, या गाड़ी में बैठे हुआ होगा, या घर में, या कमरे में, या सूरीनाम देश में, या जहाँ भी हो हमारा रेडियो फाहून के प्रोग्राम आप लोग बस सुनते रहो, और आपको हम प्यार भरी गाना, पुराने गाने, कुछ नए नए गाने से हम आपको सेवा करेंगे। अब देखा जाए, कोई बता दे दिल है कहाँ, आपको मालूम है कि आपका दिल कहाँ है। एक द्वैत सॉन्ग की ओर हम जाते हैं, फिल्म के नाम है मैं चुप रहूंगी, और सुनील दत्त मीना कुमारी का ये गाना है हमारे दोस्तों।

बता दे, दिल है यहाँ और दर्द भी वहीं होता है। दोस्तों जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है और ये गाना मैं चली आप सभी लश्राज के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली मैं चली, और कहाँ चली आप तो अपने जानते कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है। कहते हैं कितना हसीन है मौसम, और मौसम कब हसीन होता है जब अगर आपके दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है। तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा, चाहे जो भी मौसम होगा, लेकिन आपको हसीन जरूर लगेगी। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में ओल्ड रोमांटिक हिट्स दोस्तों कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आप के साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम की ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आज़ाद का ये फिल्म नई खतीन 5/5 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले और जाने कहां, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों हम सब मिलके सुना जाए।

बसे ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, और आपके जुल्फों भी क्या इतनी सुंदर है हमारे दोस्तों। फिल्म तीसरी मंजिल का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग के सुनाया है, और इसमें काम किया है शमी कपूर जी और हेलन जी, और गाना को गाया है भाई आशा मोहम्मद रफी जी और आशा भोसले। दोस्तों हम चलते हैं अगला गाना का ओर, वो है मेरी हमसफर लता जी और मुकेश जी की ओर हम चलते हैं। और इसमें ये गाना भी एक बहुत पुराना फिल्म है भाई, और आप लोग को हम सुनाते हैं मेरे हमसफर फ्रॉम लता मुकेश जी।

मेरे हम सफर हो मेरी हम सफर, लगता अमोगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भू मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, नेहा इन फिर का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब कयामत होगी। मिस्टर एक्स बम्बई 1964 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं, और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता के ओर हम बढ़ते हैं। जो भी महबूब मेरे के गाना है पत्थर के सनम 1964 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: Film पत्थर का सनम, पत्थर के सनम नई गति सेफनेस ऐसी गाना का हमने निकाला है, जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, तो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथ ही लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है।

जिसे पद पे चला उस पद पे मुझे, मुझे लता जी फिल्म के नाम है, यादगांठ से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों, हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

भाई जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन ये आंखें क्या होगा सुनने वालों आपने खुद ही सुना है। हम चलते हैं ये है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में शमाई है और ये फिल्म ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे। मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और हुल्दर बर्मन की सांच में और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना नेहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

0: जब हम जवां हो गए और जब हम जवां हो गए तो तुझे हम याद, तुझे याद हम करेंगे दोस्तों। और ये बहुत नेकत इंद्रिय तक का ये फिल्म है, जब हम जवां हो गए।
1: और दोस्तों प्यार भरी मोहब्बत भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग से मां जा आप लोग को और सेवा करेंगे दोस्तों। पहले हम चलते हैं कि पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा घूंटा है, पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा है, वो अपना हो न हो दिल पर राज हमेशा उसकी ही रहता है। तो ये बात है दोस्तों, और हम तुरंत चलते हैं। और आपकी आ जाने से क्या होता है दोस्तों, और मोहम्मद अजीज आपको क्या सुनाएगा, साधना संगम सरगम है इसमें, और फिल्म के नाम है गुथ गर्स खुद गर्स। दोस्तों आओ मिलकर सुना जाए।

और आम किया जाने से हमारा भी यहाँ पर मन बहुत चाहते हैं दोस्तों, और हम इस प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और कहते हैं सिखवा करने से गए थे और इबादत से हो गई, सिखवा करने गए थे और इबादत से हो गई, तुझे भूलने की जिद थी मगर तेरी आदत से हो गई। और दोस्तों आज हम आप लोग को और तक सैफ तक नेह तक का कुछ गाना सुनाएंगे दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए उदित नारायण एंड अलका याग्निक।

आई मेरे, और क्या क्या आप लोग सुनते हैं अलका और उदित नारायण का ये सॉन्ग है दोस्तों। और कहते हैं कि देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम में, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। नोकमाल्स नोकीर बेस्टल इस्त्रात, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। दोस्तों तो आज आप लोग को हम कुछ शायर और शायरी की और मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग्स आप लोग को लिए हम चलाएंगे। और एक और हो जाए मारे मरे तो मरे तो लाखों होंगे तुझ पर, मरते तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ। दोस्तों और चला जाए और ये गाना की ओर, कि पूछो जरा पूछो।

और तुमसे ये दिल लगाने की सजा है। दोस्तों राजा हिंदुस्तानी 1966 भैया नहीं खनती सस नहीं खनता का ये गाना है। और पूछो जरा पूछो अलका और कुमार शानू का, आज हम आप लोग को कुछ गीत और सुनाएंगे हमारे प्यारे दोस्तों, और मोहब्बत भरी सॉन्ग समाज आप लोग को और सुनाते ही रहेंगे। हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर, हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर तेरे ही शिकायत करनी है तुझसे। और दोस्तों प्यार भरी और हम आज आप लोग को सॉन्ग सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और शायरी के और कुछ शायर के बातचीत भी, कुछ शायरी भी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और कहते हैं कि यहाँ पर अलका फीना गई है दोस्तों और उदित नारायण।

और दोस्तों, आप जहां भी हो, चाहे जौन देश में हो, हमारा प्यार आपके पास पहुंचे। और वो कहते हैं, वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी। समझ गया दोस्तों, एक कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाऊंगी। जवाब मैं क्या दूं दोस्तों, जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ गए ना हमारे प्यारे दोस्तों, कि ये कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी, जवाब मैं क्या दूं जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे प्यारे दोस्तों, ये बात ही कि कहते हैं कि अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार की लंबी अनजाने हो गए हैं, जहां पर फूल खिलते हैं कभी आज वहीं पर वीरान हो गए हैं दोस्तों। और ये सब बात कब होता है, जब प्यार में टकरार होता है। तो वो कहते हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए, प्यार के लम्बे अनजाने हो गए, जहां पर फूल खिलते थे कभी आज वहीं पर वीरान हो गए है दोस्तों। और हम चलते हैं एक गीत की ओर। आ जाना, और फिल्म के नाम है कूली नंबर 1। भैया मिलकर सुना जाए।

दोस्तों अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और कुछ शायरी और शायरी हमारा आप लोग को लिए और हम कुछ बना कर लाए हैं कि कहते हैं मोहब्बत का एहसास हमारे दोस्तों हमारे चाहने वाले हमारे प्यारे प्यारे हमारे लवली लवली लोग और कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। समझ गए ना दोस्तों कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों ये तो बात भी होता है ना प्यार में कभी कभी, और प्यार में ये भी होता है दोस्तों कि रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, जब तुम छोड़ कर जाते तो हम मर जाते। और हम चलते हैं और एक प्यार भरी गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यारे दोस्तों, हम आप लोग को प्यार भरी गाना चलाएंगे और आगे का प्रोग्राम हम बढ़ाते हैं फॉर ओनली द लवर्स के लिए। इस गाना को और शायरी हम यहां से चलाते हैं, ओनली लवर्स दोस्तों। और हम यहां कहते हैं कि होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, उन्हें देखकर फिर से होश खो गए तो मैं क्या करूं दोस्तों। कि होशे हालात में कबूल तो कर लिया मैंने, उनके देखकर फिर होश खो गए तो क्या करूं हमारे दोस्तों। मुझे नहीं मालूम है प्यारे लोगों, मुझे नहीं मालूम है वो पहली बार कब अच्छा लगा, मुझे मालूम नहीं है कि पहली बार वो मुझे कब अच्छा लगा, मगर उसके बाद कभी बुरा भी नहीं लगा हमारे दोस्तों। और हम चलते हैं और एक गीत की ओर, कहते हैं मुझे जीने नहीं देते हैं याद तेरे।

और आज हम आप लोग को श्री फॉर द लवर्स के लिए कुछ शायरी यहाँ पर हम और आपको सुनाते हैं कि कहते हैं कि प्यार वो नहीं, प्यार वो नहीं हमारे प्यारे दोस्तों, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। यामें से प्यार वो नहीं है, प्यार वो नहीं है जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार सिर्फ वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। फॉर द लवर्स। और दूसरा है मुस्कुराते हैं लब, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, बस एक आपके कमी है दोस्तों, आपकी कमी है। और सुना जाए आप क्या है।

दीवाना और मैं तेरा दीवाना। दोस्तों और यहाँ से कुछ प्यार भरी शायरी आप सबके लिए हम यहाँ से चलाते हैं। कभी कभी लोग जो है वो कहते हैं कि वो प्यार करते हैं, लेकिन उसका उसका एहसास उसको नहीं होता है कि अब क्या होगा और आगे को क्या होता है। तो यहाँ से हम बताते हैं कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का, डर है इस बात का कि तुम्हें कोई कोई बात गलत ना लग जाए। कभी कभी होता है दोस्तों कि बात करने तो चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कहीं हमारा बात इसको कुछ गलत ना लग जाए, तो वो बात करने में घबराते हैं। कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का कि तुम्हें कोई बात गलत ना लग जाए। और दूसरा है दोस्तों, हम इश्क के वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने चाहे तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों जब किसी से इतना प्यार हो जाते हैं तो जब किसी और आपको देखते हैं तो और या आप किसी को देखते हैं तो अपने आप को आपको फूल करने लगते हैं कि हम इश्क में वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों हम चलते हैं एक प्यार भरी गीत की ओर।

जी हाँ, आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप सबको हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

गीता राय जी और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और गीत हमने निकाले हैं निकली फेह फेफ तक से ओपन एयर के साज पर और पेश किए ये शानदार गीत। आपको एक बात बता दूं, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। उस समय मैं 7 साल का था, जिंदगी में पहली बार ये फिल्म हमने देखे हैं थिएटर में। वैसे तो रे करे 80 साल में देखे हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गए हैं थिएटर लुक्सोर में गए ये फिल्म को देखने। बहुत अच्छा लगा था थिएटर में बैठ के, एक कुर्सी पर अच्छा लगा था। वैसे तो बांगी पर बैठ कर देखते थे। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म सुनहरा संसार में से निकाले हैं नेकदी फैफिन सैफिन तक नौशाद अली के साज पर। और लता जी

लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म सुनहरा संसार में से निकाल कर 1975 का ये गीत नौशाद अली के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, शाम का वक्त है तो लीजिए इस तरह से।

देखती हूँ जिधर आशा जी, जी हाँ आशा जी फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं लेकिन त्वेन शस्त्र और ओपेन नैयर के साथ पर हमने चलाए हैं। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, जब आप भी हैं और मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है।

कारण कैसे हो मुकेश जी और लता जी मिलके आपको सुनाएं मदन मोहन के साज पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं, महेंद्र कपूर जी, फिल्म का नाम है सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन, फिल्म का नाम है निगेटिव ट्विन, शस्त्र से हम निकाले हैं। इस तरह से हम आपको सुनाते हैं।

दिली दुनिया है मेरी, महेंद्र कपूर जी और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। और फिल्म लिखती तो ऐसे कहा देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन के साज फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में से निकाल कर हमने पेश किए कल्याण जी आनंद जी के साज पर ये गीत था। चलिए अगला गीत है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, बस आप भी हैं मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर आपको ये सुनाऊँ इस तरह से। अच्छा जी और रफी

इजाज़त हो तो सुना दूँ। ये गीत चला ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, आशा जी और रफ़ी जी ने आपको मिलके सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस क्या ख्याल है।

एवरग्रीन जी नहीं, एवरग्रीन नहीं, लेकिन द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत साहब ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है, ये गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिर भी मैं चला रहा हूँ फिलिप अनुपमा में से निकाल कर नेकतीन सस्तक और हेमंत कुमार के साज है लता जी है।

0: उठो ना, गा।
1: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाने।
0: अभी तो बहुत वक्त है, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है